0: आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी। इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े में देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपड़ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भाई ने बोलो, आप एक कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हूं, यह आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जैया हवा में आपड़े हाल हूं, ये भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ूंगा, पानी ने बचा लूंगा, मैं आपड़ी धरती में जीवन दान आलूंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है, ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
4: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहे हो आपनो सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणी मन स्वागत करो हूँ अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बुनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथे। तो भाई बुनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि खेत ने मिट्टी ने स्वस्थ राखव केम जरूरी है, स्वस्थ मिट्टी हूँ कहवाया है, नी मिट्टी ने स्वस्थ राखवाना हूँ एवं पारंपरिक उपाय हैं से अपना ने अपनावा होगा। तो अणव विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी अब तक की घना कानी बातें थाएंगा, पर कार्यक्रम शुरू कर इन्हें पहले आपने हमारा विदा गीत ने मोरे कर अपनी बातें। तो बहन बोनो आप हम बढ़ते रहे सु आपू रेडियो अपनी बातें वागर रेडियो 90.8 FM माते।

0: વાઇનબોનું ગીત તો આયશું પૂરું, અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણીમાન સ્વાગત કરો હો અમારે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે વાઇનબોનું ગીત થકી પહેલા આપણે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે ખેતની મિટ્ટીને સ્વસ્થ રાખવું આપણે બદલે કેમ જરૂરી હે, તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણા કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી માંગીલાલજી. તો સબ થકી પહેલા આપણે સાંભળી લાણાની વાતે મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર જી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: જી ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કી આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે સમય સમય પર જુડતે રહેતે હૈ ઓર ખેતી સે જુડી વિશેષ જાણકારી આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો દેતે હૈ, તો સર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે ખેત કી મિટ્ટી કો સ્વસ્થ રખના ક્યું જરૂરી હૈ ઓર ઇસકે લિયે હમારે કિસાન ભાઈ બહેન ક્યા કર સકતે હૈ. તો સબસે પહેલે આપ હમ યહી બતાઈએ કે ઇસકા આખિરકાર મહત્વ ક્યા હૈ.
1: જી તો દેખીએ, જો મિટ્ટી કી હમ બાત કરતે હૈ તો મિટ્ટી જો ખેત કી હોતી હૈ વો ખેત કા જીવન હોતી હૈ.
0: બિલકુલ.
1: ઓર વો જીવન જો હૈ ચાહે વો મનુષ્ય સે દેખો આપ, પેદાવાર સે દેખો આપ, હર તરીકે સે મિટ્ટી કા સ્વચ્છ હોના બહોત જરૂરી હૈ. તો હમારે કિસાન ભાઈ દેખતે હૈ કે ખેત કી જો મિટ્ટી હૈ વો કેવલ એક ફસલ ઉગાને કા માધ્યમ નહીં સમજીએ ઉસકો, બલ્કિ એક પૂરી વ્યવસ્થા હૈ આપકી ફસલ કા આધાર હૈ. હમે ઇસકો સ્વચ્છ રખના બહોત જરૂરી હૈ તાકી પોષક તત્વ હવા પાણી તો જડો તક આરામ સે વો જો હૈ પહોંચ સકે. તો હમ ક્યા હૈ કે જબ મિટ્ટી કી વાત કરતે હૈ તો જિતની મિટ્ટી આપકી સ્વચ્છ હોગી, અચ્છી હોગી, બહેતર હોગી, ઉતના હી પેદાવાર આપકો અચ્છા મિલેગા.
0: બિલકુલ.
1: દૂસરી બાત યે હૈ કે જૈસે હમારે બાગડી કી હમ બાત કરતે હૈ તો ખેતી લંબે સમય સે પ્રકૃતિ, સ્થાનીય જ્ઞાન ઓર ઉપલબ્ધ જો સંસાધન હૈ ઉનકી જો આધારિત રહી હૈ ઉન પર. हमारे जो पूर्वज थे वो मिट्टी को प्रकृति को पहचान कर फसल का चुनाव करते थे, खेत में जैविक पदार्थ जो थे वो मिट्टी में डालते थे ताकि उर्वरकता बनी रहे.
0: बिल्कुल.
1: इसके साथ में आप देखोगे कि मिट्टी का संतुलन बनाए रखने के लिए वो बदल बदल कर फसलों का चयन करते थे ताकि उसका संतुलन बना रहे और वो स्वच्छ रहे और जो उसके अंदर पोषक तत्व है वो हमेशा मौजूद रहे.
0: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि मिट्टी का स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है, यही स्वस्थ मिट्टी क्या होती है
1: हम बात करते हैं. तो यहाँ पे क्या कि स्वस्थ मिट्टी का मतलब सीधा सा ये है कि उसके अंदर जो है पोषक तत्व तो उपस्थित हो, उसके अंदर उर्वरकता है मिट्टी की वो अच्छी हो और जो जड़ें होती है पौधों की उनका पर्याप्त विकास के लिए हवा और जो नमी है वो उसमें बनी रहे.
0: बिल्कुल.
1: तो वो एक स्वच्छ मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी जहाँ पानी को कुछ समय तक अपने अंदर सोख कर रखती है, आवश्यकता अनुसार वो पौधों को देती रहती है. तो ये क्या होती है, भुरभुरी होती है जिसको हम बोलते हैं ना, तो बहुत भुरभुरी होती है.
0: जी जी.
1: तो अगर भुरभुरी है तो हम समझे कि ये स्वस्थ है और इसमें जो जैविक पदार्थ है वो मौजूद है. तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे जब आप अपने खेत में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि जो मिट्टी है उसमें आपको कुछ जीव नजर आएंगे छोटे छोटे, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि इसमें जो है वो छोटे जीव है वो आपकी मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए काफी बेहतरीन होते हैं.
0: बिल्कुल.
1: इसके साथ में आप जो अपनी मिट्टी का रंग देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता कितनी है और उसमें क्या किया जा सकता है.
0: जी जी.
1: तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारी मिट्टी को.
0: बिल्कुल सर. तो जैसा कि आपने बताया कि स्वस्थ मिट्टी क्या होती है, यही मिट्टी को स्वस्थ रखना हमारी फसल के लिए क्यों जरूरी होता है.
1: देखिए हम बात करते हैं फसल की, तो फसल भी हम चाहते हैं कि अधिक पैदावार हो और जो भी फसल हमारे खेत से आए वो पौष्टिक हो, उसमें पोषक तत्व हो और उसकी गुणवत्ता बेहतर हो. अब इन सब के लिए जो है मिट्टी का स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है. तो स्वस्थ मिट्टी की हम बात करते हैं तो फसल की जो जड़ें होती है वो क्या होती है कि मिट्टी से पानी और पोषक तत्व प्राप्त करती है.
0: बिल्कुल.
1: जो फसल आपने लगाई है यदि मिट्टी पोषक तत्वों की कमी होगी या असंतुलन होगा तो पौधों की जो वृद्धि है वो प्रभावित होगी और स्वस्थ मिट्टी पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करती है. अगर वो स्वस्थ नहीं रखेंगे तो उसका विकास नहीं होगा.
0: बिल्कुल.
1: इसी तरह हम देखते हैं कि जो मिट्टी की बात करते हैं तो वो पानी को बचाने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होता है. तो स्वस्थ जो मिट्टी होती है उसमें क्या जैविक पदार्थ वाली मिट्टी होती है उसमें उसमें क्या होता है कि जो पानी है वो बेहतर क्षमता होती है उसको सोखने की और जितना पानी वो सोखती है वो धीरे धीरे फिर अपनी फसलों को वो देती रहती है.
0: बिल्कुल.
1: इसी तरह आप देखोगे कि बारिश के दिनों में भी खेत में जो पानी रहता है तो अगर मिट्टी आपकी अच्छी होगी तो उस पानी को अच्छे से सोखेगी और आपकी मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा और उस स्थिति में क्या होगा कि लंबे समय तक जो नमी है वो बनी रहेगी।
0: जी जी।
1: तो इस तरह से हम जो पानी है उसके लिए भी जरूरी है, और इसमें आप देखेंगे तो मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको बनाए रखने के लिए भी जो है हमारी मिट्टी का स्वच्छ होना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें क्या होता है कि अच्छी मिट्टी की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उर्वरकता है वो काफी अधिक होती है, और उसमें जैसे बोलते हैं बंजर भूमि, तो बंजर होने के चांस बहुत कम रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर आपने उसमें अच्छे से ध्यान नहीं रखा, आपने उसमें जो खाद बीज जो भी आप डाल रहे हैं परंपरागत, उसके अलावा अगर इसमें आप रासायनिक उपयोग करते हैं तो मिट्टी जल्दी बंजर होने का चांस रहता है।
0: बिल्कुल।
1: तो उसका भी हम ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें जैसे गोबर खाद है, वर्मी कम्पोस्ट है, या उकेड़ा है, या हरी खाद है, और हमारे जो फसल के अवशेष होते हैं उनको हमें वहीं छोड़ देना चाहिए, ताकि वो है हमारी मिट्टी को स्वच्छ रखें और वो मिट्टी को अपने पोषक तत्व है वो प्रदान करते रहें।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह आप देखोगे कि जो मिट्टी है उसको जब हम बात करते हैं कि उसको किस तरह से स्वच्छ रखना जरूरी है, तो जब स्वस्थ मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें एक चीज और नजर आएगी आपको कि उसमें क्या होता है कि जीव जंतु है मिट्टी के अंदर वो बहुत होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वो आपका इतना उस मिट्टी को प्रोसेस करते हैं, इतना बेहतर बनाते हैं। जैसे केचुआ आपने देखा होगा, तो केचुआ आगे से खाता है तो पीछे से वो लार्वा छोड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: उसी तरह के छोटे छोटे कीट है वो हमारी मिट्टी में मौजूद होते हैं, तो वो क्या है कि अपनी मिट्टी को खाकर, जो सड़े गले आपके अवशेष उनको खाकर, आपने गोबर या वो डाला है बर्मी कम्पोस्ट, तो फिर उसको और प्रोसेस करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उससे क्या होता है कि आपकी मिट्टी भुरभुरी रहती है और आपकी फसल है वो बेहतर तरीके से जो है पैदावार देती है।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि मिट्टी को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है, यही बात आती है कि मिट्टी को स्वस्थ रखने के कौन से ऐसे आसान से परंपरागत उपाय हैं जो हम सभी को अपनाने चाहिए।
1: देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज है वो बहुत तरीके अपनाते आए हैं, कुछ अपना भी रहे हैं लेकिन कुछ लोग इनको भूलते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे आप देखेंगे खेत में फसल के अवशेष जो है उनको जलाना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि आजकल आपको लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे फसल के अवशेष है उसको जला देंगे खेत साफ हो जाए, लेकिन वो है जो सही तरीका नहीं है वो, और वो नुकसान होता है आपकी मिट्टी में।
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें क्या है कि जैसे अगर आप उसको वहीं छोड़ देंगे तो वो आपका कंपोस्ट का काम करेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो उनको नहीं जलाना चाहिए। गोबर खाद जो है उसका उपयोग करना चाहिए आपको, कि जैसे अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद है, तो स्थानीय जैविक जो खाद होती है वो क्या है मिट्टी के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, और जो मिट्टी के गुण है उनको बेहतर बनाने में सहायक है।
0: जी जी।
1: इसी तरह जैसे कच्चे गोबर की जगह हमें जो है सड़ा हुआ गोबर डालना। कई बार क्या होता है कि जैसे पशु है उनका गोबर उठा के हम डायरेक्ट खेत में डाल देते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। उसको अच्छे से प्रोसेस होने दे, उसको आप उसको गड्ढे में डालें, उकेड़े में डाल के जब वो पक जाए तब आप फिर उसको डालें।
0: बिल्कुल।
1: एक तरीका ये भी है कि जो फसल है हमारी उसको विविधता को ध्यान में रखें। होता क्या है कि हमारे किसान भाई एक ही फसल को एक ही खेत में बार बार बार बार बोते रहते हैं, इससे क्या होता है कि जो फसलें हैं उनकी जो मिट्टी है वो मिट्टी खराब होने लगती है। जैसे हर वर्ष एक ही फसल बोना, जो फसल चक्र है उसको अपनाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: ताकि हर चीज जो है वो मिट्टी है उसको मिले भी। अगर आपने जैसे मूंग लगाया या आपने कुछ लगाया तो आपको हरी खाद मिलेगी, कार्बन मिलेगा, लेकिन आपने वहां पे सिर्फ मक्का ही मक्का या गेहूं गेहूं किया तो मिट्टी है जल्दी खराब होती है। तो उसका ध्यान रखें हमेशा। खेत को जो है हमेशा खुला न छोड़े। खुला का मतलब ये है कि जैसे हमने खेत की मिट्टी है उसको लंबे समय तक हमने बुआई करके छोड़ दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बुआई भी कर दी तो उसमें फसल का अवशेष या वो जो है उसमें होने चाहिए, ताकि वो हरी खाद का उपयोग करें। तेज बारिश में जो है उसमें हवा को रोकने में और मिट्टी कटाव में मदद करते हैं वो, तो इसलिए उन्हें हमें वहीं छोड़ देना चाहिए, ना कि वो खेत को आप ऐसे ओपन करके छोड़ दिया।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा इसमें एक तरीका और है कि हमारी जो फसल है उसको क्या है कि जब हम मिट्टी को स्वच्छ रखने की बात करते हैं, हमारी मिट्टी है उसको जो है हमें एक तो जो जांच है वो जांच आपको करवा लेनी चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे क्या जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा है क्या कि हमारे जो किसान भाई क्या करते हैं कि बार बार खेत को जुताई करते हैं, उनको लगता है कि बार बार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अनावश्यक जुताई नहीं करनी चाहिए।
0: बिल्कुल सर।
1: क्योंकि जब अनावश्यक जुताई होती है तो आपकी मिट्टी की जो नमी है वो धीरे धीरे बहुत गहराई तक चली जाती है।
0: जी हाँ, तो सर जैसा कि आपने बताया कि मिट्टी को स्वस्थ रखने के क्या आसान से तरीके हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, यही किसान स्वयं मिट्टी की स्थिति को कैसे पहचान सकता है?
1: देखिए, किसान है हमारा जो

0: बताया कि मिट्टी का स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। यहीं अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, तो मैं सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि मिट्टी को केवल उत्पादन का साधन नहीं समझे, बल्कि जीवित प्राकृतिक संपदा माने और उसकी सेहत की जिम्मेदारी मिलकर निभाए।
0: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी, धन्यवाद।
0: जिम की भाई बोनू अवड़े आपड़े वस में मांगीलाल जी जुड़े तक हता ने एने आपड़ा ने घणी अचल तरीका तक की घणा आकानी बातें बताड़ी है। एने आपड़ा ने बताड़ू है कि स्वस्थ मिट्टी हूँ कहवा है, ने मिट्टी ने स्वस्थ राखवा बल्ले आपड़ा ने कई कई चीजों ध्यान राखव है, ने एने साथे एने बताड़ू कि मिट्टी स्वस्थ राखवाना हूँ आसान उपाय है जे आपड़ा भाई बहनों ने अपनावा सुवे। तो आशा करो हो कि आ हंगरी बातें आपने गमी होंगा, क्योंकि अभी टाइम थे गयो है आपड़े अणस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ा, पण साथे पहले हमरी लायक और गीत ने मोरे पड़ो सूटा।

माइन बनो अणस की थाते कार्यक्रम खेती बाड़ी तक पड़ा सूटा। आशा करा हो कि ऐसे कार्यक्रम में हमारी अब तक जी भी बातें रही ही आपने कमी होगा। तो आपने अमारो आज नो कार्यक्रम केवु लाग्यु इने बारे में आप राय सुझाव अमने आली सको अमरा अणपता मते। हमारो पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3200001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमरा अणा फोन नंबर माते। हमारो फोन नंबर है 9414082643। तो बहन बोनू फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक ना विषय ने हाते तारुदी। राम राम राम राम।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरा ने मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सी व्यायाम ने तात्कालिक ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनू खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, जहां हम बात करते हैं अपने बच्चों की, अपने बचपन की और उन छोटी छोटी बातों की जो उनके आने वाले कल को बेहतर बनाती है। कहते हैं कि बच्चा मिट्टी के उस घड़ी की तरह होता है जिसे जिस आकार में ढाला जाए वह धीरे धीरे वैसा ही बनता जाता है। बचपन में सीखी गई बातें श्रोता साथियों केवल कुछ दिनों तक नहीं रहती बल्कि जीवन भर उनके व्यवहार और व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जब बच्चा किसी दूसरे बच्चे को मारता है, घर में कूड़ा इधर उधर फेंकता है या अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने से बचता है तो उसे हम किस तरह समझाते हैं? क्या केवल डांटने से अच्छी आदतें विकसित होती हैं या फिर बच्चे को अपने व्यवहार से सिखाना भी उतना ही जरूरी है? तो इन सवालों के साथ आज हम लेकर आए हैं एक छोटा सा नाटक जिसका विषय है बच्चों में अहिंसा, स्वच्छता और जिम्मेदारी की आदत, क्योंकि अच्छे संस्कारों की शुरुआत किसी पाठशाला से पहले हमारे अपने घर से होती है। तो कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा फागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम कार्यक्रम के माध्यम से एक छोटा सा नाटक लेकर आए हैं जिसका विषय है बच्चों में अहिंसा, स्वच्छता और जिम्मेदारी की आदत कैसे विकसित करें और इसकी शुरुआत हमारे घर से कैसे होती है। तो आइए सुनते हैं हमारे आज के रेडियो नाटक को।
1: अरे राम राम कमला बहन, आओ आओ, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ?
2: राम राम सीमा, बस घर के काम निपटा कर सोचा थोड़ी देर तुमसे मिल लूं। लेकिन यह क्या, आज तुम्हारे आंगन में इतनी गंदगी कैसे फैली हुई है? कल तो सब साफ था।
1: अरे क्या बताऊं बहन, मेरा बेटा सुबह से पूरे घर में उधम मचा रहा है। कभी खिलौने इधर फेंकता है, कभी कागज और कभी खाने के रेपर आंगन में डाल देता है। अभी तो मैंने उसे समझाया भी, लेकिन उसकी आदत ही नहीं सुधर रही।
2: अच्छा सीमा, और तुमने उसे क्या समझाया?
1: क्या समझाती, दो बार प्यार से बोला, फिर गुस्सा आ गया। कह दिया, अगर दोबारा गंदगी फैलाई ना तो सारे खिलौने उठाकर बाहर फेंक दूंगी। लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
2: सीमा एक बात पूछो।
1: हाँ पूछो।
2: जब तुम घर में झाड़ू लगाती हो, बर्तन साफ करती हो और हर चीज अपनी जगह पर रखती हो, तो क्या वह तुम्हें देखता है?
1: हाँ देखता तो है, कई बार तो मेरे पीछे पीछे घूमता भी रहता है।
2: बस वही से तो सीख शुरू होती है। बच्चे हमारी बातें सुनते जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारे कामों को देखते हैं। अगर हम खुद घर की साफ सफाई रखेंगे, चीजों को जगह पर रखेंगे और कूड़ा है वो कूड़ेदान में डालेंगे, तो बच्चा भी धीरे धीरे यही व्यवहार सीखता है।
1: बात तो तुम्हारी सही है बहन, लेकिन छोटा बच्चा है ना, उसे कैसे समझ में आएगा कि सफाई क्यों जरूरी है?
2: समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। बस हमें उसकी उम्र के हिसाब से समझाना होगा। उसे यह नहीं कहना है कि तुम गंदे हो या तुम्हें कुछ नहीं आता, बल्कि खेल खेल में सिखाना होगा कि हमारा घर साफ रहेगा तो हम सब स्वस्थ और खुश रहेंगे।
1: अच्छा, यह तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। मैं तो बस उसे डांट देती हूँ।
2: अरे सीमा, डांटने से बच्चा उस समय तो चुप हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह आदत को समझ भी जाए। उसे काम में शामिल करो, जैसे खिलौने समेटने में मदद मांगो, रेपर कूड़ेदान में डालने को कहो, और जब वह सही काम करे तो तुम थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दिया करो।
1: हाँ बहन, तुमने सही कहा, आज से मैं यही कोशिश करूंगी। कमला बहन, एक बात और है, मेरा बेटा कभी कभी गुस्से में दूसरे बच्चों को मारने लगता है। कोई इसका खिलौना छू ले तो धक्का दे देता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, आखिर उसे कैसे समझाऊं कि किसी को मारना गलत है?
2: देख सीमा, बच्चों को गुस्सा आना अपने आप में एक सामान्य बात नहीं है। छोटे बच्चे कई बार अपनी बात शब्दों से नहीं कह पाते हैं, इसलिए रो कर, चिल्ला कर या हाथ चला कर अपनी नाराजगी को जताते हैं। ऐसे समय में हमें पहले उसका गुस्सा समझना चाहिए और फिर उसे सही तरीका हमें सिखाना चाहिए।
1: लेकिन जब वह किसी को मारता है तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता है। कभी कभी तो मन करता है कि उसे भी मैं थप्पड़ लगा दूं, ताकि उसे समझ में आए कि मारने से कितना दर्द होता है।
2: अरे नहीं बहन, ये तो हमें ध्यान रखना है। अगर हम बच्चे को मार कर समझाएंगे कि मारना गलत है, तो वह क्या सीखेगा? उसके मन में तो यही बात बैठेगी कि ताकतवर व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए ही मार सकता है।
1: तो फिर उस समय क्या करना चाहिए?
2: सबसे पहले शांत रहना चाहिए, प्यार से लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए, बेटा गुस्सा आ सकता है, लेकिन किसी को मारना, धक्का देना या चोट पहुंचाना सही नहीं है। अगर तुम्हें खिलौना चाहिए तो बोल कर मांगो, अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो हमें बताओ।
1: यानी कि गुस्सा करने से मना नहीं करना, बल्कि गुस्सा जताने का सही तरीका सिखाना है।
2: बिल्कुल, अहिंसा का मतलब केवल किसी को नहीं मारना नहीं है, इसका मतलब है कि हम अपने शब्दों और व्यवहार से किसी को चोट न पहुंचाएं। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि किसी का मजाक उड़ाना, कमजोर बच्चों को परेशान करना, जानवरों को पत्थर मारना या किसी को डराना गलत व्यवहार है।
1: हाँ, कई बार बच्चे खेल खेल में छोटे जानवरों को परेशान करते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो मजाक है।
2: हाँ सीमा बोन, इसीलिए उन्हें समझाओ कि जानवरों को भी दर्द होता है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के प्रति दया रखना अच्छे संस्कारों का हिस्सा है। जब बच्चा किसी घायल पक्षी को देखकर उसकी मदद करना सीखता है या किसी छोटे बच्चे के साथ खिलौना बांटता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि संवेदनशीलता है वो विकसित होती है।
1: और अगर दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हो तो?
2: तब भी किसी एक को दोषी ठहराने की बजाय हमें दोनों बच्चों की बात सुन लेनी है। बच्चों को बारी बारी से बोलने देना है, उन्हें बताना चाहिए कि समस्या का हल बातचीत से निकल सकता है। जब हम अपने बच्चों को शांतिपूर्ण अपनी बात को रखना सिखाते हैं सीमा बहन, तो वे एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना सीखते हैं।
1: अच्छा, अब समझ आया। केवल ये कह देना कि अच्छे बच्चे लड़ते नहीं है काफी नहीं है, हमें उन्हें ये भी सिखाना होगा कि नाराजगी होने पर क्या करना चाहिए।
2: बिल्कुल सही। अहिंसा की पहली सीख घर में तभी मिलती है जब परिवार के लोग एक दूसरे से सम्मान पूर्वक बात करते हैं और भेदभाव होने पर भी अपशब्दों का सहारा नहीं लेते हैं।
1: कमला बहन, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब मैं अपने बेटे को सफाई के कामों में भी शामिल करूंगी। लेकिन बच्चे तो थोड़ी देर काम करते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। ऐसी आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बनाए रखें?
2: देखो सीमा, अच्छी आदतें एक दिन में नहीं बनती हैं।

0: उन्हें रोज दोहराना पड़ता है, जिसे सुबह उठकर हाथ मुंह धोना, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ साफ करना, शौचालय का उपयोग करने के बाद साबुन से हाथ धोना और अपने आसपास गंदगी न फैलाना, ये बातें हैं वो हमें बच्चों को रोज सिखानी चाहिए।
1: अच्छा, सही कह रही हो तुम। कई बार बच्चे खाना खाते खाते इधर उधर चले जाते हैं और हाथ भी ठीक से नहीं धोते।
0: तो सीमा, खाना खाने से पहले हाथ धोने का परिवार में एक नियम आप बना लो, खुद भी उसका पालन करो, बच्चों के सामने हाथ धोते हुए बताओ कि हमारे हाथ पर ऐसी गंदगी और कीटाणु हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। साफ पानी और साबुन से हाथ धोना हमारे सेहत की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है।
1: और घर के कूड़े का क्या? गांव में कई लोग कूड़ा बाहर रास्ते पर या नाली के पास ही डाल देते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
0: यह भी हमें बच्चों को समझाने की जरूरत तो है। घर का कूड़ा निर्धारित जगह पर हमें डालना चाहिए। गीले और सूखे कचरे को अलग रखना जहाँ संभव हो वहाँ से शुरुआत हम कर सकते हैं। पानी जमा न होने देना, घर के आसपास सफाई रखना और खुले में कचरा न फेंकना, ये सभी जरूरी है।
1: हमारे यहाँ तो बच्चे कई बार पानी पीकर गिलास वहीं छोड़ देते हैं और खिलौने भी जहाँ खेले वहीं पड़े रहते हैं।
0: तो सीमा, उनकी उम्र के अनुसार हमें छोटी जिम्मेदारियाँ तय करनी है। बच्चा छोटा है तो उससे भारी काम नहीं करवाना है, लेकिन अपना खिलौना टोकरी में रखना, इस्तेमाल के बाद गिलास सही जगह पर रखना, अपनी किताबें समेट कर रखना, जैसे छोटी छोटी आदतें हैं वो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं।
1: अच्छा, यानी घर के सारे काम माँ की जिम्मेदारी नहीं है, परिवार के सभी सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और जब बच्चा देखता है कि घर में माता पिता और दूसरे सदस्य हैं वो सफाई और व्यवस्था में योगदान देते हैं, तो उन्हें समझ आता है कि जिम्मेदारी सबकी होती है। केवल बेटियों को घर का काम सिखाना और बेटों को उससे दूर रखना भी हमारे लिए सही नहीं है। दोनों को समान रूप से अपने काम करना हमें सिखाना चाहिए।
1: ये बात तो बहुत जरूरी है कमला बहन। हमारे घरों में कई बार लड़कों को ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि ये काम तो लड़कियों का है।
0: और हाँ सीमा, यही सोच हम देखते हैं कि आगे जाकर उनकी जिम्मेदारियाँ बांटने में रुकावट बन सकती है। बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, उसे अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए, घर को साफ रखना चाहिए और दूसरों की मदद करना भी हमें सिखाना है।
1: अब मैं अपने बेटे को छोटे छोटे काम दूंगी और खुद भी उसके साथ करूंगी। इससे उससे लगेगा नहीं कि उसे सजा दी जा रही है, बल्कि वह इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा समझेगा।
0: हाँ, और जब वो कोई काम खुद से करे तो उसकी प्रशंसा भी करना जरूरी है हमारे लिए। यह मत कहना कि तुम तो हमेशा गंदगी फैलाते हो, उसके बजाय कहो कि आज तुमने अपना सामान अच्छे से समेटा, मुझे तुम्हारी मदद में खुशी हुई। ऐसी बातें वो बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ा सकती हैं।
1: कमला बहन, एक बात और पूछूं?
0: हाँ पूछो।
1: कई बार मेरा बेटा कोई चीज तोड़ देता है या गलती करता है तो तुरंत दूसरे पर दोष डाल देता है। कभी कहता है कि बिल्ली ने गिराया, तो कभी कहता है कि किसी और ने किया होगा, मुझे क्या पता। क्या यह भी उम्र के साथ ठीक हो जाएगा?
0: हाँ सीमा, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं वो गलती करने के कारण सच बताने से डर जाते हैं। अगर हम गलती पर उन्हें डांटे या सजा दी तो हम देखते हैं कि वो अपनी गलती है वो छिपा लेते हैं। इसीलिए घर का माहौल हमें ऐसा बनाना है कि बच्चा सच बोलने में सुरक्षित महसूस करे।
1: लेकिन अगर वो जानबूझकर कोई चीज तोड़ेगा तो क्या उसे कुछ नहीं कहना है मुझे?
0: अरे सीमा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को प्यार से यह समझाना जरूरी है कि गलती का असर क्या हुआ है और उसे ठीक करने के लिए उसकी भूमिका क्या हो सकती है। मान लो उसने पानी का गिलास गिरा दिया, तो पहले उसे सुरक्षित जगह पर करो और काज हो तो खुद साफ कर लो। फिर बच्चे को बताओ कि अगली बार गिलास ध्यान से रखना,
1: यानी कि गलती छिपाने के बजाय उसे सुधारने की आदत डालनी चाहिए।
0: बिल्कुल, जिम्मेदारी का अर्थ यह नहीं कि हम अपने काम और व्यवहार के परिणाम को समझें। बच्चों को अपनी गलती स्वीकार करना, माफी मंगवाना और जहाँ तक संभव हो नुकसान सुधारने में मदद करना भी एक सीख हो सकती है।
1: और अगर वह किसी दूसरे बच्चे का खिलौना तोड़ दे तो?
0: तब उसे समझाओ कि दूसरों की चीज का सम्मान करना भी जरूरी है। वह बच्चों से माफी मांग सकता है और खिलौना ठीक करने या उसकी भरपाई करने के लिए उसकी उम्र के अनुसार मदद कर सकता है। इससे वह केवल माफ़ी मांगना नहीं बल्कि अपने व्यवहार और जिम्मेदारी लेना भी सीखता है।
1: सही कहा कमला बहन, और ये जिम्मेदारी केवल घर तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसे गांव, स्कूल और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल सीमा, स्कूल में कक्षा को साफ रखना, सार्वजनिक जगहों पर कचरा न फैलाना, पानी की बर्बादी रोकना, पौधों की देखभाल करना और जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करना, ये सभी जिम्मेदार नागरिक बनने की छोटी छोटी शुरुआत हो सकती है।
1: हाँ कमला, हमारे गांव में अगर हर घर अपने बच्चे को ये बातें सिखाएं तो पूरा गांव साफ और सुंदर बन सकता है।
0: और हाँ, सबसे बड़ी बात, बच्चे एक दूसरे को देखकर भी सीखते हैं सीमा। जब मोहल्ले के बच्चे मिलकर पौधे में पानी डालते हैं, खेल के बाद मैदान को साफ करते हैं और झगड़े के बजाय मिल बांटकर खेलते हैं, तो उससे हम देखते हैं कि उनमें सहयोग और अपनापन का जो भाव होता है वो भी बढ़ता है।
1: मुझे लगता है कि अब हमें बच्चों को केवल अच्छे अंक लाने और पढ़ाई करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, उन्हें तो अच्छा इंसान बनने की सीख भी देनी चाहिए।
0: बिल्कुल सीमा, पढ़ाई बच्चों को ज्ञान देती है, लेकिन घर और समाज से मिलने वाले संस्कार उसे उस ज्ञान का सही उपयोग करना सिखाते हैं। दया, सम्मान, स्वच्छता और जिम्मेदारी ऐसी आदतें हैं जो उनके पूरे जीवन भर उनके साथ रहती है।
1: कमला बहन, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोचती थी कि बच्चा छोटा है, अभी क्या ही समझेगा, लेकिन अब लग रहा है यही तो उसकी सीखने की उम्र है।
0: हाँ बहन, बचपन में ही बच्चों के मन के व्यवहार की नींव पड़ती है। हम उसे प्यार, धैर्य और अपने उदाहरण से कई सारी सीख है वो उन्हें सिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर दिन कोई बड़ी सीख दी जाए, रोजमर्रा के छोटे काम ही उसके संस्कार बनाते हैं।
1: आज से मैं अपने घर में 3 बातें जरूर अपनाऊंगी। पहली ये कि किसी को मारना या अपशब्द कहना नहीं, बल्कि अपनी बात प्यार से कहना है। दूसरी ये कि घर और आसपास सफाई रखनी है। और तीसरी ये कि अपना काम खुद करना है और गलती होने पर उसे स्वीकार भी करना है।
0: हाँ सीमा, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही। और साथ में याद रखना कि यह सीख केवल बच्चों के लिए नहीं है, हम बड़ों के लिए भी है। जब हम खुद एक दूसरे का सम्मान करेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, तब बच्चे इन बातों को अच्छे संस्कार के रूप में अपनाएंगे।
1: अब तो मैं चाहती हूँ कि हमारे मोहल्ले की सभी माताएं मिलकर बच्चों के साथ एक छोटा सा स्वच्छता और अच्छे व्यवहार का अभियान शुरू करें। हर रविवार बच्चे अपने आसपास सफाई करेंगे, पौधों की देखभाल करेंगे और मिलकर साथ खेलेंगे।
0: अरे ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन बच्चों पर बोझ बनाकर नहीं, खेल और खुशी के साथ। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि सफाई, अहिंसा, जिम्मेदारी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि अपने परिवार और समाज के प्रति प्यार जताने का एक तरीका है।
1: बिल्कुल बहन, आज से हम खुद भी बदलेंगे और बच्चों को भी अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ाएंगे।
0: हाँ सीमा, क्योंकि आज का समझदार, संवेदनशील और जिम्मेदार बच्चा ही आने वाले समय में ऐसा समाज बनाएगा जहाँ लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे और मिलजुल कर साथ रहेंगे।
1: बिल्कुल।
2: तो साथियों, आपने सुना आज का नाटक, जिसमें सीमा और कमला की बातचीत के माध्यम से हमने समझा कि बच्चों के अच्छे संस्कारों की शुरुआत घर के छोटे छोटे व्यवहारों से होती है। बच्चों को अहिंसा सिखाने का अर्थ उसे दूसरों की भावनाओं को समझना, अपनी नाराजगी को सही शब्दों में व्यक्त करना और किसी को चोट पहुंचाए बिना समस्या का समाधान करना सिखाना है। स्वच्छता सिखाने का अर्थ केवल घर में झाड़ू लगवाना नहीं, बल्कि अपने शरीर, घर, गांव और प्रकृति के प्रति सम्मान पैदा करना भी है। वहीं जिम्मेदारी का संस्कार बच्चों को अपने काम स्वयं करने, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और दूसरों के अधिकारों पर ध्यान रखने की सीख देता है। याद रखिए कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए महंगे खिलौनों या बड़ी बड़ी सीखों की जरूरत नहीं होती, उन्हें जरूरत होती है हमारे समय की, हमारे धैर्य की और हमारे व्यवहार की। जब घर में बातचीत सम्मान से होती है, काम मिल बांट कर किए जाते हैं और गलती सुधारने का अवसर दिया जाता है, तब बच्चा धीरे धीरे इन्हीं बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। तो आज जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी बातें रही हैं, आशा करती हूँ कि ये बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। बागड़ रेडियो एवं बागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरा ने मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
2: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, गांधी जी केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि आज भी हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने वाली विचारधारा है। जरूरत है उनके विचारों को पढ़ने से आगे बढ़कर उन्हें अपने व्यवहार में उतारने की।
1: आप सभी श्रोता साथियों को वागर रेडियो परिवार की ओर से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है, आज के युवाओं के लिए गांधी जी के विचार कितने प्रासंगिक है।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि कशिश, आज का युवा डिजिटल दुनिया में जी रहा है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है, दुनिया उसकी स्क्रीन पर है, उसके सामने करियर की दौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, सोशल मीडिया का प्रभाव है और अपने भविष्य को लेकर कई तरह की चुनौतियां भी हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में लगभग एक सदी पहले दिए गए गांधी जी के विचार हमें क्या दे सकते हैं, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी सवाल को समझने की हम कोशिश करेंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो बातें ढेर सारी होंगी लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है और आज का कार्यक्रम भी काफी विशेष है क्योंकि आज हम कार्यक्रम के माध्यम से उस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जिसने बिना हथियार उठाए भी सत्य और अहिंसा को अपनी ताकत बनाया था।
1: बिल्कुल,
0: तो इसी दिवस के स्मरण में सुनते हैं यहाँ पर कार्यक्रम का पहला गीत।
1: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी का जीवन केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। उनके विचारों में सत्य है, अहिंसा है, आत्मनिर्भरता है, सादगी है, जागृति जी स्वच्छता है, जिम्मेदारी है और समाज के प्रति संवेदनशीलता जैसे कई संदेश छिपे हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आज के इस कार्यक्रम का सवाल थोड़ा अलग है। जब आज युवा तेजी से बदलती दुनिया, सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक के बीच आगे बढ़ रहे हैं, तब गांधी जी के विचार उनके जीवन में कितने उपयोगी और कितने प्रासंगिक है, यही आज हम बात कर रहे हैं।
1: जी हाँ,
0: क्या गांधी जी का सत्य आज के डिजिटल दौर में उतना ही महत्वपूर्ण है युवा साथियों? क्या अहिंसा केवल इतिहास का हिस्सा है या आज के मतभेदों को सुलझाने का रास्ता भी हो सकती है? तो बात करते हैं महात्मा गांधी जी के विचारों की।
1: बिल्कुल कशिश, महात्मा गांधी जी केवल स्वतंत्रता आंदोलन के नेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने जीवन जीने के कई ऐसे सिद्धांत दिए जिन्हें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अपना सकता है।
0: बिल्कुल,
1: उनके विचारों में सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता, सादगी, स्वच्छता, श्रम की गरिमा, समानता, सामाजिक जिम्मेदारी और आत्म अनुशासन जैसे विषय प्रमुख थे।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी का मानना था श्रोताओं की बदलाव केवल बाहर से नहीं आता, बदलाव की शुरुआत व्यक्ति स्वयं से करता है। यही बात आज के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम अक्सर कहते हैं समाज बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए, लोगों को बदलना चाहिए, लेकिन गांधी जी की सोच हमें एक दूसरा सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है कि मैं अपने स्तर पर क्या बदल सकता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है कि बदलाव की शुरुआत दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है।
0: जी हाँ जागृति जी, साथ ही अगर हम सत्य की बात करें तो गांधी जी के विचारों में सत्य का महत्वपूर्ण स्थान था। श्रोता साथियों, आज का समय सूचना का समय है, हमारे पास हर पल हजारों जानकारियां आती रहती हैं। सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर, वीडियो या खबर सामने आती है और कुछ ही मिनटों में वह बहुत सारे लोगों तक भी पहुँच जाती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सवाल ये है कि क्या इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर बात सच होती है? कई बार जागृति जी, बिना जांच किए हम किसी खबर को आगे भेज देते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में अधूरी जानकारी देखकर राय बना लेते हैं। कभी कभी तो युवा साथियों, सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी को भी हम वास्तविकता से अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में गांधी जी का सत्य का विचार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि सत्य का मतलब केवल झूठ न बोलना ही नहीं, सत्य का मतलब है अपने विचारों, व्यवहार और जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार होना। एक विद्यार्थी जागृति जी परीक्षा में ईमानदारी रखे, एक युवा नौकरी में ईमानदारी रखे, एक सोशल मीडिया यूजर किसी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचे।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कि ये सभी सत्य के एक व्यवहारिक रूप हैं।
1: बिल्कुल कशिश, तो श्रोता साथियों, अगली बार जब हमारे मोबाइल पर कोई सनसनीखेज खबर आए, उसे तुरंत आगे भेजने से पहले एक बार आप जरूर रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या ये सच है। शेयर करने से पहले जांच करना बहुत जरूरी है और सत्य को अपनी आदत जरूर बनाए।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ अहिंसा को लेकर बात करें कशिश, तो जब हम अहिंसा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में हिंसा न करने की बात आती है, लेकिन अहिंसा का दायरा इससे कहीं बड़ा है।
0: जी हाँ,
1: आज युवाओं के सामने कई तरह के मतभेद है, दोस्तों के बीच, परिवार में, कॉलेज में, कार्यस्थल पर और सोशल मीडिया पर। किसी की बात पसंद न आए तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, कमेंट में बहस बढ़ जाती है, कभी कभी शब्द इतने कठोर हो जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचती है। ऐसे समय में अहिंसा का अर्थ हो सकता है मतभेद हो लेकिन सम्मान बना रहे। हम किसी की राय से असहमत हो सकते हैं श्रोताओं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सामने वाले का अपमान करना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: आज के डिजिटल दौर में शब्दों की अहिंसा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। किसी को ट्रोल करने से पहले, किसी पर टिप्पणी करने से पहले और किसी के बारे में कुछ लिखने से पहले अगर हम एक पल सोचे श्रोताओं, तो कई विवाद वहीं समाप्त हो सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए कहा गया है कि असहमति हो सकती है लेकिन अपमान नहीं करना है।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से बहुत अच्छी हमारी चली रही है, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातचीत चल रही थी गांधी जयंती को लेकर। हम बात कर रहे थे गांधी जी के जीवन के बारे में, यही बात करते हैं आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सोच के बारे में।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, गांधी जी ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को बहुत महत्व दिया। आज के युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल किसी वस्तु का निर्माण करना नहीं, इसका अर्थ है अपने कौशल पर भरोसा करना, नई चीजें सीखना और अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करना। हम देखते हैं कि आज का युवा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकता है, वो ऑनलाइन सीख सकता है, नए कौशल विकसित कर सकता है और अपने हुनर को दूसरों तक पहुंचा सकता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है, हम केवल उपभोक्ता न बने बल्कि निर्माता बनने की दिशा में भी सोचें। अगर कोई युवा खेती से जुड़ी नई तकनीक सीखता है, स्थानीय उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने का तरीका सीखता है, हस्तशिल्प को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाता है या अपने हुनर से रोजगार का अवसर पैदा करता है, तो ये आधुनिक अर्थों में आत्मनिर्भरता की दिशा है।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही अगर बात करें कि सादगी आज भी जरूरी है या नहीं, तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में हमारी जिंदगी का एक हिस्सा दूसरों को दिखाने में भी बीत जाता है।
0: बिल्कुल।
1: कपड़े कैसे हैं, फोन कैसा है, कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या खरीदा और किसके कितने लाइक्स हैं, इन सबके बीच कई बार श्रोता साथियों हम ये भूल जाते हैं कि जीवन की वास्तविक खुशी केवल चीजों की संख्या से तय नहीं होती। गांधी जी का जीवन सादगी का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। आज के युवाओं के लिए सादगी का मतलब ये नहीं है कि वह आधुनिक सुविधाओं को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि हम सुविधाओं का उपयोग तो करें युवाओं, लेकिन सुविधाएं हमारी जिंदगी को नियंत्रित न करें।
0: बिल्कुल।
1: मोबाइल हमारे हाथ में हो लेकिन हमारा पूरा समय मोबाइल के हाथ में न हो। फैशन हम जरूर करें लेकिन केवल दूसरों की नकल करने के लिए नहीं। हम नई नई चीजों को खरीदें लेकिन जरूरत और जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखकर।
0: बिल्कुल। इसलिए कहा भी गया है कशिश की सुविधा जीवन को आसान बना देती है, जीवन का उद्देश्य नहीं बनती है। इसी के साथ हम जानते हैं स्वच्छता और जिम्मेदारी के बारे में। तो कशिश, जैसा कि गांधी जी ने स्वच्छता को भी महत्व दिया था, आज स्वच्छता केवल घर और सड़क की सफाई तक सीमित नहीं है, ये हमारी सामुदायिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। एक युवा अगर अपने आसपास कचरा नहीं फैलाता है, कचरे को उचित स्थान पर डालता है, पानी की बर्बादी को रोकता है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता है, तो समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
1: बिल्कुल।
0: सामुदायिक रेडियो जैसे माध्यम भी इसी सोच को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और हमारा रेडियो भी इसी कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करता है।
1: जी जी।
0: जहाँ स्थानीय समस्याओं पर बात होती है और समुदाय को समाधान का हिस्सा बनाया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और कहा भी गया है कि स्वच्छ समाज की शुरुआत जिम्मेदार नागरिक से ही होती है।
1: जी हाँ जागृति जी। साथ ही अगर बात करें तो गांधी जी शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं मानते थे, उनकी शिक्षा संबंधित सोच में व्यक्ति के शरीर, मन और चरित्र के विकास पर भी जोर दिया जाता था।
0: बिल्कुल।
1: आज का युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में नई करियर बना रहे हैं, लेकिन शिक्षा का

0: बिल्कुल
1: हो सकता है श्रोताओं कि आपके लिए इनमें से हर विचार का अपना महत्व हो, लेकिन बदलाव केवल विचार सुनने से नहीं आता, बदलाव तो तब आता है कशिश जब विचार हमारे व्यवहार का हिस्सा बनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी का समय और आज का समय बिल्कुल एक जैसा नहीं है। आज तकनीक है, सोशल मीडिया है, नई अर्थव्यवस्था है, नई करियर है और नई सामाजिक चुनौतियां है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए श्रोताओं गांधी जी के विचारों को उसी रूप में दोहराने के बजाय उनके मूल संदेश को आज की परिस्थितियों के संदर्भ में समझना और अधिक उपयोगी हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: सत्य हमें जिम्मेदार बनाता है, अहिंसा हमें संवाद करना सिखाता है, आत्मनिर्भरता हमें अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रेरणा देती है, सादगी हमें जरूरत और दिखावे में अंतर समझाती है, स्वच्छता हमें सामुदायिक जिम्मेदारी का एहसास कराती है।
0: बिल्कुल,
1: और समानता हमें बेहतर समाज बनाने की दिशा दिखाती है। इसलिए गांधी जी को केवल इतिहास की किताबों में पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, उनके विचारों पर सवाल करना, उन्हें समझना और आज के संदर्भ में उनके अर्थ पर विचार करना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं को ये कहना चाहेंगे कि गांधी जी को याद करना केवल उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाना नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि अपने जीवन में सत्य, संवेदना और जिम्मेदारी के लिए जगह बनाना भी है।
1: बिल्कुल,
0: विचार तब भी जीवित रहते हैं श्रोता साथियों जब वे हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं। इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ अब जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बातें ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे जागृति जी, लेकिन जाने से पहले क्यों ना एक प्यारा सा गीत यहाँ पर दोस्तों को सुनवाएं।
1: जी हाँ।

0: साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: भाई ने बोलो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरा ने मुस्कान।
1: होवे इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हमरो गरीबों ने पूछे हैं, जमीन माटी नाम हेरते आवे, कागज केने कने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थी जाए।
0: तो हमरो बोलो, अरे सब समस्या में समाधान आपे कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरो ने हाथों मिलने जावू है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन माते नाम लगाड़वो काटो नती, जयवरे अधिकार हमरो अपनावे, जानकारी सबनो हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
2: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लगाड़ो।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज का हमारा विषय है सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज को लेकर। अंजलि, जब किसी गांव के चौपाल पर लोग मिलकर अपने गांव की समस्या पर चर्चा करते हैं, जब किसान अपने खेत और पानी के बारे में स्वयं निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, जब गांव का युवा अपने हुनर से अपने ही क्षेत्र में रोजगार का रास्ता तलाशता है और जब लोग बिना भेदभाव एक दूसरे का साथ देते हैं, तब लोकतंत्र केवल किताबों में नहीं रहता बल्कि जमीन पर भी दिखाई देता है। महात्मा गांधी जी ने ऐसे ही स्वावलंबी, जागरूक और आत्मनिर्भर गांव का सपना देखा था। उनके लिए स्वराज का अर्थ केवल विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था। श्रोताओं, सच्चा स्वराज तो तब है जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बने, समाज अपने निर्णयों में भागीदारी करे और गांव अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए आगे बढ़े।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ में हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल। तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और बातें भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती हमें गांधी जी के जीवन और विचारों को याद करने का अवसर देती है। गांधी जी के विचारों में सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन, स्वच्छता, समानता और ग्राम स्वराज का विशेष स्थान था।
1: जी जी।
0: आज सच्चा स्वराज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि गांधी जी का सत्य और अहिंसा का संदेश क्या था और ग्राम स्वराज की उनकी कल्पना आज के गाँव के लिए किस तरह प्रासंगिक हो सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि गांधी जी के जीवन का सबसे मजबूत आधार था सत्य। सत्य का अर्थ केवल झूठ न बोलना नहीं है, सत्य का अर्थ है अपने विचार, व्यवहार और कार्यों में ईमानदारी रखना।
0: बिल्कुल।
1: अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना। श्रोता साथियों, आज के समय में सही जानकारी का महत्व बहुत बढ़ गया है। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हमें हर दिन बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन हर सूचना सही हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे में गांधी जी का सत्य का सिद्धांत हमें सिखाता है कि किसी भी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता जांचनी चाहिए। गांव में किसी योजना, सरकारी सुविधा, खेती, स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी गलत जानकारी कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जागरूक नागरिक वही है श्रोता साथियों, जो जानकारी प्राप्त करता है, उसकी पुष्टि करता है और फिर दूसरे तक सही जानकारी पहुँचाता है।
0: जी हाँ अंजलि, यही सत्य की आज की उपयोगिता है। गांधी जी ने अहिंसा को जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना। श्रोताओं, अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक नुकसान न पहुंचाना नहीं है, किसी को अपमानित करना, कमजोर व्यक्ति को दबाना, भेदभाव करना या किसी की बात सुने बिना उसे गलत समझ देना भी समाज में तनाव पैदा कर सकता है। गांव में बहुत सारे परिवार और समुदाय एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, ऐसे में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ने की बजाय संवाद और समझदारी से समाधान निकालना बहुत जरूरी है। गांधी जी का संदेश हमें बताता है अंजलि कि बातचीत की शक्ति संघर्ष को कम कर सकती है। यदि किसी गांव में पानी, रास्ते, चरागाह, स्वच्छता या किसी अन्य सामुदायिक संसाधन को लेकर समस्या है तो श्रोताओं, आपसे बातचीत, ग्राम सभा और सामूहिक निर्णय के माध्यम से समाधान खोजा जा सकता है और यही अहिंसा की सकारात्मक शक्ति है।
1: बिल्कुल। यही बात करें कि ग्राम स्वराज क्या है, तो श्रोता साथियों, गांधी जी ग्राम स्वराज को ऐसे गाँव के रूप में देखते थे जो अपनी जरूरतों को समझे, अपने निर्णयों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें और स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़े।
0: जी हाँ।
1: ग्राम स्वराज का अर्थ यह नहीं कि गांव दुनिया से अलग हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि गांव अपने स्थानीय संसाधनों, ज्ञान, श्रम और क्षमता का सम्मान करते हुए विकास की मुख्य धारा से जुड़े। आज ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह, किसान समूह, युवा समूह और सामुदायिक संस्थाएं लोगों की भागीदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: जब गांव के लोग केवल योजना के लाभार्थी न रहकर योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में भाग लेते हैं जागृति जी, तब स्वराज की भावना और अधिक मजबूत होती है।
0: बिल्कुल अंजलि, ग्राम स्वराज की कल्पना को समझने के लिए ग्राम सभा को समझना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि ग्राम सभा गांव के लोगों को अपने स्थानीय मुद्दों पर चर्चा और भागीदारी का अवसर देती है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, गाँव में सड़क कहाँ बनेगी, पानी की समस्या का समाधान कैसे हो, स्वच्छता को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, विद्यालय और आंगनवाड़ी से जुड़ी जरूरतें क्या है, सार्वजनिक संसाधनों की देखभाल कैसे हो, ऐसे विषयों पर सामूहिक चर्चा लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत करती है। ग्राम सभा में भाग लेना केवल अधिकार नहीं है, जिम्मेदारी भी है। यदि हम अपने गाँव की समस्याओं के समाधान में भाग नहीं लेंगे तो केवल दूसरों से बदलाव की उम्मीद करना पर्याप्त नहीं है। सच्चा स्वराज वहीं से शुरू होता है जहां नागरिक अपने गांव के लिए अपनी जिम्मेदारी समझता है।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि बातें ढेर सारी चल रही हैं हमारी श्रोता साथियों से, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत चल रही है सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज को लेकर, जिसमें जागृति जी हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें आत्मनिर्भर गांव की दिशा की ओर। तो श्रोता साथियों, गांधी जी आत्मनिर्भरता पर जोर देते थे। आज के गांव में आत्मनिर्भरता का अर्थ स्थानीय संसाधनों और स्थानीय कौशल का बेहतर उपयोग करना हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: कृषि के साथ पशुपालन, बागवानी, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, स्थानीय खाद्य उत्पाद, पारंपरिक कला और ग्रामीण पर्यटन जैसे क्षेत्र गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दे सकते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्थानीय स्तर पर उत्पाद तैयार हो और उन्हें बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत हो तो गांव के लोगों के लिए आय के नए अवसर बन सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि हर चीज गांव में ही तैयार हो। इसका अर्थ है कि जहां स्थानीय स्तर पर क्षमता मौजूद है वहां उसे पहचान कर मजबूत किया जाए।
1: बिल्कुल अंजलि, गांधी जी ने स्वच्छता को बहुत महत्व दिया था, ये हम सब जानते हैं कि आज भी गांव के विकास में स्वच्छता की भूमिका महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: स्वच्छ घर, स्वच्छ गलियां, साफ पानी, उचित कचरा प्रबंधन और खुले में गंदगी को रोकने की सामूहिक कोशिश गांव के जीवन को बेहतर बना सकती है। स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है श्रोताओं, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर हर परिवार अपने घर के साथ साथ आसपास के सार्वजनिक स्थान को भी साफ रखेंगे तो पूरे गांव में बदलाव दिखाई दे सकता है। इसी के साथ जल, जमीन और प्रकृति की रक्षा को लेकर हम बात करें तो ग्राम स्वराज का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्थानीय प्राकृतिक संसाधन की रक्षा भी है। अंजलि, गांव का जीवन खेत, पानी, जंगल, पशुधन और प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, स्थानीय जैव विविधता की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, गांधी जी के विचार हमें समझने की प्रेरणा देते हैं कि विकास प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर होना चाहिए।
0: जी हाँ जागृति जी, यही बात करें युवा और ग्राम स्वराज की तो श्रोता साथियों, आज गांव में युवा बड़ी संख्या में शिक्षा, तकनीक और नए विचारों से जुड़े हैं।
1: बिल्कुल,
0: युवा ग्राम स्वराज को नई दिशा दे सकते हैं। वे डिजिटल तकनीक का उपयोग करके सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और गांव की समस्याओं के समाधान के लिए नए विचार सामने ला सकते हैं। कहना चाहेंगे कि गांधी जी का स्वराज केवल बुजुर्गों या नेताओं की जिम्मेदारी नहीं था, हर पीढ़ी की अपनी भूमिका होती है।
1: बिल्कुल,
0: वहीं अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो जागृति जी, ग्राम स्वराज तब मजबूत होता है जब गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी भी मजबूत होगी। महिलाएं परिवार, कृषि, पशुपालन, जल प्रबंधन, बचत और स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ,
0: महिलाएं स्वयं सहायता समूह और स्थानीय संस्थानों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक और सामाजिक निर्णयों में अपनी भागीदारी बढ़ा सकती है। जब निर्णय प्रक्रिया में समाज के अलग अलग वर्गों की आवाज शामिल होती है तब लोकतंत्र अधिक सहभागी बन पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, हम देखते हैं कि आज तकनीक का युग है, मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल भुगतान और आधुनिक कृषि तकनीक ने जीवन को काफी बदल दिया है। फिर भी गांधी जी के कुछ मूल विचार आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन, स्वच्छता, समानता और जिम्मेदार नागरिकता। तकनीक हमारे हाथ में साधन दे सकती श्रोताओं, लेकिन उसका सही उपयोग कैसे करना है ये हमारे मूल्यों पर ही निर्भर करता है। इसीलिए आधुनिक गांव को तकनीक के साथ साथ गांधी जी के मूल विचारों से भी जुड़ना होगा। हम देखते हैं अंजलि कि ग्राम स्वराज किसी एक व्यक्ति या संस्था के प्रयास से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए नागरिक, पंचायत, किसान, युवा, महिलाएं, शिक्षक, सामाजिक संस्थाएं और स्थानीय समुदाय सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है।
0: जी जी,
1: सच्चा स्वराज तब दिखाई देगा श्रोताओं जब लोग अपने गांव की समस्याओं को केवल शिकायत के रूप में नहीं बल्कि समाधान की जिम्मेदारी के रूप में देखेंगे।
0: बिल्कुल,
1: जब हम पानी बचाएंगे, पेड़ बचाएंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, सही जानकारी को फैलाएंगे, ग्राम सभा में भाग लेंगे और आपसी विवादों को संवाद से सुलझाने की कोशिश करेंगे तब गांधी जी के विचार हमारे व्यवहार में दिखाई देंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, गांधी जयंती केवल गांधी जी की तस्वीर पर माला चढ़ाने का दिन नहीं होता है, यह अपने जीवन और समाज में उनके विचारों को समझने और अपनाने का अवसर है। सत्य हमें सही रास्ता दिखाता है, अहिंसा हमें साथ लेकर चलना सिखाती है।
1: बिल्कुल,
0: स्वावलंबन हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है और ग्राम स्वराज हमें याद दिलाता है कि गांव का विकास गांव के लोगों की भागीदारी से ही मजबूत बनता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए गांधी जयंती पर हम यह संकल्प लें कि अपने गांव को केवल सुविधाओं से नहीं बल्कि जिम्मेदारी, सहयोग, स्वच्छता, सत्य और सहभागिता से भी मजबूत बनाएंगे, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का नाम नहीं यह अपने गांव, अपने समाज और अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी का नाम है
1: जी हाँ।
0: और जब हर गांव जागरूक होगा, हर नागरिक जिम्मेदार होगा, हर हाथ विकास में अपना योगदान देगा, तभी गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना एक जीवंत विचार बनकर हमारे बीच दिखाई देगा।
1: बिल्कुल,
0: यही गांधी जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही होगा हमारा सच्चा स्वराज।
1: बिल्कुल अंजलि, तो अंत में हमारे श्रोता साथियों से यही कहना चाहेंगे कि सत्य हमारा दीप बने, अहिंसा हमारी राह, गांव-गांव में जागे चेतना, यही स्वराज की चाह हो। मिलकर कदम बढ़ाए हम, नया सवेरा लाए हम, सच्चे अर्थों में स्वराज अपने गांव में पाए हम। इसी संदेश के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम सच्चा स्वराज से हम विदा लेना चाहेंगे साथियों, पर जाने से पहले सुना देते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ,

0: उम्मीद के साथ साथियों विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से सत्य अहिंसा को लेकर वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बूंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बूंद, हूँ था का?
0: अरे जागृति बूंद, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बूंद, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बूंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बूंद, आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बूंद, आपड़े भाई बूंदो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि शरीर के संकेतों को हमें समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर कई बार बिना कुछ कहे भी हमें बहुत कुछ बताता है।
0: बिल्कुल,
1: लगातार थकान, शरीर में कमजोरी या अचानक चक्कर आना, हम अक्सर इन्हें काम की अधिकता, नींद की कमी और सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना सही नहीं होता। आज हम समझेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि थकान, कमजोरी और चक्कर के सामान्य कारण क्या हो सकते हैं और किन परिस्थितियों में हमें सावधान होना चाहिए और कब डॉक्टर से सलाह लेना हमारे लिए जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं शरीर के संकेतों को समझिए, थकान, कमजोरी और चक्कर को कब गंभीरता से लेना है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारा शरीर हमें हर समय कुछ न कुछ संकेत देता रहता है। कभी हमें भूख लगती है, कभी नींद आती है, कभी शरीर आराम मांगता है और कभी दर्द के माध्यम से शरीर बताता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस तरह श्रोता साथियों, थकान, कमजोरी, चक्कर भी शरीर के कुछ महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। कई बार श्रोता साथियों दिन भर काम करने, कम नींद लेने, ज्यादा मेहनत करने या समय पर खाना न खाने के कारण थोड़ी सी थकान वो सामान्य बात हो सकती है। आराम करने और सही भोजन लेने के बाद ऐसी थकान ठीक भी हो जाती है अंजलि जी। लेकिन अगर श्रोता साथियों थकान बार बार हो, कमजोरी लगातार बनी रहे, बिना किसी स्पष्ट कारण के चक्कर आने लगे, तो इसे केवल सामान्य परेशानी समझकर श्रोता साथियों में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि हम दिन भर काम करने के बाद थकान महसूस करते हैं और ये सामान्य बात है।
0: जी हाँ,
1: पर्याप्त आराम और नींद के बाद यह कम भी हो जाती है। लेकिन अगर बिना ज्यादा काम किए भी लगातार थकान महसूस हो, रोजमर्रा के काम करने में परेशानी होने लगे या लंबे समय तक आराम के बाद भी ऊर्जा वापस न आए, तो इसके कारण पर ध्यान देना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: इसके पीछे नींद की कमी, तनाव, भोजन में पोषक तत्वों की कमी, शरीर में खून की कमी या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए श्रोता साथियों, लगातार बनी रहने वाली थकान को केवल कमजोरी कहकर छोड़ देना ठीक नहीं है। कभी कभी हमें लगता है मनीषा कि शरीर में ताकत ही नहीं है, सीढ़ियां चढ़ने, चलने या रोज के काम में पहले की तुलना में ज्यादा परेशानी होने लगती है। ऐसी स्थिति में श्रोता साथियों अपने खान पान और आराम पर ध्यान दें। भोजन में पर्याप्त दालें, अनाज, सब्जियां, मौसमी फल, दूध और उपलब्ध अन्य जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं, उन्हें शामिल करें और पर्याप्त पानी पिएं। अगर कमजोरी लगातार बनी रहती है या बढ़ती जा रही है, तो स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर से सलाह लेना भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, कमजोरी का मतलब शरीर में ऊर्जा की कमी भी हो सकती है। व्यक्ति को लग सकता है कि उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं है, सीढ़ियां चढ़ने, थोड़ा सा चलने, रोज के काम करने में थकान महसूस हो सकती है। कमजोरी कभी कभी खाना ठीक न मिलने या शरीर को पर्याप्त आराम न मिलने के कारण भी श्रोता साथियों हो सकती है। लेकिन अगर यह लगातार बनी रहती है, तो इसके कारण को समझना अंजलि जी हमारे लिए बहुत जरूरी है। संतुलित भोजन शरीर को ऊर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन में श्रोता साथियों, जैसे कि अंजलि जी ने आपको बताया था कि अनाज, दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध या इसके जो अन्य वैकल्पिक मेवे हैं, वो उचित मात्रा में हम शामिल कर सकते हैं।
1: जी हाँ मनीषा, यही बात करें चक्कर आने पर तुरंत क्या करें, तो श्रोता साथियों चक्कर आने पर तुरंत खड़े होकर चलने की कोशिश न करें। सुरक्षित जगह पर बैठ जाएं या लेट जाएं ताकि गिरने से चोट न लगे। कभी कभी भूखे रहने, शरीर में पानी की कमी, अचानक उठने या बहुत अधिक गर्मी के कारण भी चक्कर आ सकते हैं। इसलिए पर्याप्त पानी और नियमित भोजन का ध्यान रखें। लेकिन अगर चक्कर बार बार आए, बहुत तेज हो या उसके साथ अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दे, तो इसे गंभीरता से भी लेना चाहिए। अगर चक्कर या कमजोरी के साथ बेहोशी, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, बोलने में दिक्कत, शरीर के किसी हिस्से में अचानक कमजोरी या सुन्नपन, चलने में गंभीर परेशानी, तेज सिर दर्द या भ्रम जैसी स्थिति हो, तो इंतजार नहीं करना चाहिए और तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह मनीषा, अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने पर भी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बातें चल रही हैं, जैसे कि हम बातें कर रहे हैं शरीर के संकेतों को समझिए, थकान, कमजोरी और चक्कर को हमें कब गंभीरता से लेना है। तो ये बातें हमारी इस विषय पर आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से थकान, कमजोरी और चक्कर के जो संकेत हैं, वो हमें किस तरीके से समझने हैं और उन्हें कब गंभीरता से लेना है। यही बात करें कि थकान या कमजोरी महसूस होने पर कई बार जो लोग हैं वो बिना जांच के आयरन, विटामिन और दूसरी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने के बजाय पहले कारण समझना श्रोता साथियों बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: अगर समस्या बार बार हो रही है या लंबे समय से बनी हुई है तो डॉक्टर आपकी स्थिति देखकर आवश्यक जांच की सलाह भी दे सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि समय पर संतुलित और व्यवस्थित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, पूरी नींद लेने की कोशिश करें, बहुत देर तक खाली पेट न रहें, अचानक बैठने और लेटने से खड़े होने के बजाय धीरे धीरे उठें। लगातार थकान या चक्कर हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है। जरूरत महसूस होने पर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से सलाह भी लेनी है।
1: जी हाँ।
0: मनीषा, अक्सर हम देखते हैं कि अभी का जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल अलग हो गया है। हम खाना कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो न तो उसका हमें पता रहता है। हम कितना काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी दिनचर्या जो है वो अव्यवस्थित हो गई है, किसी भी तरीके का कुछ भी हम ध्यान नहीं रखते हैं।
1: जी हाँ।
0: इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ हमें दिखता है और बहुत सी बार हम स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाह हो जाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य से बड़ा कोई भी धन नहीं है, इसलिए सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य को महत्व दीजिए। उसके बाद जो अन्य कार्य हैं हमारे जीवन के, उन्हें हमें पूर्ण करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं श्रोता साथियों कि कुछ दिनों की कमजोरी अगर आराम और भोजन सुधारने से ठीक हो सकती है श्रोता साथियों, तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती है। लेकिन कमजोरी लंबे समय तक बनी रहे या बढ़ती जाए तो इसके पीछे के कारण होते हैं, उसको भी हमारे लिए जानना जरूरी होता है। अगर व्यक्ति को बार बार कमजोरी महसूस होती है, चलने या रोज के काम करने में असामान्य परेशानियां होती हैं, या कमजोरी के साथ कुछ अन्य लक्षण दिखाई देते हैं, तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बुजुर्ग लोगों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को श्रोता साथियों डॉक्टर की सलाह लेना उनके लिए बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल मनीषा, शरीर हमें अचानक परेशान करने के लिए नहीं बल्कि कई बार सावधान करने के लिए संकेत देता है। थकान, कमजोरी और चक्कर हर बार किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होते, लेकिन जब ये बार बार हो और लंबे समय तक बना रहे तो इसके साथ दूसरे असामान्य लक्षण भी दिखाई दें, तो इन्हें नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है।
1: जी हाँ।
0: स्वास्थ्य का ध्यान रखने का मतलब केवल बीमारी होने के बाद इलाज कराना नहीं बल्कि शरीर में होने वाले बदलावों को समय रहते पहचानना भी है। अपने शरीर की बात सुनिए श्रोता साथियों, अपनी दिनचर्या और खान पान पर ध्यान दीजिए, जरूरत पड़ने पर सही समय पर चिकित्सा सलाह लीजिए और याद रखिए कि छोटा सा संकेत समय पर समझ लिया जाए तो बड़ी परेशानी से बचने का मौका मिल सकता है। क्योंकि मनीषा, शरीर की हर परेशानी को बीमारी मानना जरूरी नहीं है, लेकिन हर संकेत को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। अगर कोई परेशानी बार बार हो रही है और निरंतर बढ़ रही है या रोजमर्रा के काम हमारे प्रभावित हो रहे हैं, तो अनुमान लगाने के बजाय स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।
1: जी हाँ।
0: खासकर अचानक दिखाई देने वाले गंभीर लक्षणों में देरी नहीं करनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कई बार श्रोता साथियों हम डॉक्टर के पास जाकर भूल जाते हैं कि समस्या कब शुरू हुई। इसलिए कहना चाहेंगे कि अगर आपको थकान, कमजोरी या चक्कर बार बार हो रही है तो इसकी जानकारी आप लिख कर भी रख सकते हैं, जैसे कि समस्या कब हुई, कितनी देर रही, खाना खाने से पहले हुई या बाद में, काम करने के बाद हुई या आराम से पहले। ऐसे श्रोता साथियों कुछ बातें हैं वो हम लिख कर रख सकते हैं। ऐसी जानकारी हम डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर को समस्या समझने में जल्दी मदद मिल सकती है।
0: बिल्कुल मनीषा, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर न तो बेवजह हमें डरने की जरूरत है और न ही लापरवाही करने की है। सजग रहना है, समय पर सलाह लेनी है और अपनी रोजमर्रा की आदतों को बेहतर बनाना ही स्वस्थ जीवन की समझदारी है। इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य की देखभाल का पहला कदम है अपने शरीर को समझना, उसके संकेतों को सुनना और सही समय पर सही कदम उठाना।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारे स्वास्थ्य प्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहीं, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
4: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
5: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
4: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
5: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
4: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
5: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
4: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जया पेड़ की छाव में आपड़े रह हम या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जमी हवा में आपड़े हाल हम ये भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ूंगा, पानी ने बचाड़ूंगा ने अपनी धरती ने जीवन दान आलूंगा।
4: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
5: होवे आज नाना ना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

जी मैं सोचो कि थर वास्ते की ले रहा हूं, पर मन समझ ही कोनी लगी कि के ले रहा हूं। ओ जी थे ही बता दियो के ले रहा हूं।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी
1: श्रोता
0: हाँ।
1: साथियों, आज हमारी बातें होने वाली है यादों से संस्कार तक, महापुरुषों की सीख और पितरों का सम्मान।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, 2 अक्टूबर का दिन हमें भारत के दो महान व्यक्तित्वों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की याद दिलाता है। दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ और दोनों ने अपने जीवन से देश और समाज को अलग अलग लेकिन बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। एक और महात्मा गांधी का जीवन कशिश हमें सत्य, अहिंसा, अनुशासन और सादगी की राह दिखाता है, तो वहीं दूसरी ओर लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हमें सादगी, ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी का अर्थ समझाता है।
0: बिल्कुल।
1: और इसी समय हमारे बीच श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है और यह अवसर है कि जब हम अपने उन पूर्वजों को याद करते हैं जिनके जीवन, संघर्ष और संस्कारों ने हमारे परिवार को आगे बढ़ाया।
0: बिल्कुल।
1: तो आज हम बात करेंगे महापुरुषों की यादों से लेकर अपने परिवार के बुजुर्गों और पूर्वजों की याद तक और उन यादों को जो संस्कार में हमें बदलनी है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी हम करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी जी,
0: तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों, आज का कार्यक्रम काफी विशेष है क्योंकि आज हम कार्यक्रम के माध्यम से गांधी जयंती मना रहे हैं अंजलि जी। तो जैसा कि श्रोता साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिनका जीवन केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज का हमारा विषय है महात्मा गांधी जी की जयंती और उनके विचारों की प्रासंगिकता को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर बात करें तो हर वर्ष आज के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। यह दिन श्रोता साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गांधी जी का जो जीवन है वो हमें सत्य, अहिंसा, सादगी, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और मानवता का रास्ता दिखाता है।
1: बिल्कुल,
0: महात्मा गांधी जी का मानना था श्रोता साथियों कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत स्वयं से ही होती है। हम अक्सर समाज और व्यवस्था में बदलाव की बात तो करते हैं अंजलि जी, लेकिन गांधी जी का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि अगर हम अपने व्यवहार, अपनी आदतों और अपने विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए तो उसका प्रभाव हमारे परिवार, समुदाय और पूरे समाज पर पड़ सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। आगे चलकर उनका जीवन केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्य और अहिंसा के विचारों के कारण वे पूरी दुनिया में पहचाने गए। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई लंदन में की और दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। इन अनुभवों ने उनके विचारों और संघर्ष की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह और अहिंसा को महत्वपूर्ण माध्यम बनाया। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1930 की दांडी यात्रा उनके अहिंसक संघर्ष का एक ऐतिहासिक उदाहरण बनी। लेकिन गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ी बात केवल यह नहीं थी कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया, उनकी असली सीख यह भी थी कि बदलाव की शुरुआत व्यक्ति खुद से करे। वे सादगी को जीवन का हिस्सा मानते थे। स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, श्रम, समानता और सामाजिक सद्भाव जैसे विषय उनके चिंतन का हिस्सा रहे। आज गांधी जयंती पर अगर हम केवल उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर आगे बढ़ जाएं तो शायद उनके जीवन की सीख अधूरी रह जाएगी। उनकी याद को जीवन जीवित रखने का अर्थ है अपने व्यवहार और सत्य के लिए जगह बनाना, बिना हिंसा के अपनी बात रखना, दूसरों के सम्मान को समझना और अपनी जिम्मेदारी से भागने के बजाय उन्हें निभाना।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें कि गांधी जी सत्य के महत्व के बारे में क्या बताते हैं, तो श्रोता साथियों, गांधी जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार सत्य था।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने सत्य को केवल बोलने की बात नहीं माना बल्कि उसे जीवन जीने का एक तरीका भी बताया। आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर गलत जानकारी फैल जाती है अंजलि जी, तब सत्य का महत्व और भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में हमें पता चलता है कि हमें किसी भी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सच्चाई जांचनी चाहिए। परिवार में, कार्यस्थल पर हो या समाज में, ईमानदारी से व्यवहार करना भी गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में उतारने जैसा एक तरीका है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान रहे हैं, आगे भी ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल अंजलि जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, बातें बहुत अच्छी चल रही है, गांधी जी के जीवन परिचय को लेकर हम बात कर रहे हैं। और गीत से पहले, जैसा कि अंजलि जी, हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए थे कि महात्मा गांधी जी का जन्म आज के दिन 1869 को गुजरात के एक पोरबंदर शहर में हुआ था।
1: बिल्कुल,
0: आपने जैसा कि बताया था कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि पोरबंदर रियासत के दीवान थे, और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। श्रोता साथियों, उनकी माता काफी धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी।
1: बिल्कुल,
0: और उनके व्यक्तित्व पर माता के विचारों और संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। बचपन से ही अंजलि जी, गांधी जी ने सत्य बोलने, संयम रखने और दूसरों के प्रति दया रखने जैसे संस्कारों को अपनी माता से सीखा था।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने कहा था कि बचपन के संस्कार ही आगे चलकर व्यक्तित्व का नींव बनते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त की और आगे कानून की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे, लेकिन उनके जीवन की दिशा में बड़ा परिवर्तन तब आया जब वे दक्षिणी अफ्रीका गए। दक्षिणी अफ्रीका में उन्हें नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक घटना ने उनके जीवन को विशेष रूप से प्रभावित किया, जब रंग भेद के कारण ट्रेन से बाहर उन्हें निकाल दिया गया। इस अनुभव ने उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि अन्याय का विरोध किस प्रकार किया जाए। यहीं से उनके सत्याग्रह और अहिंसक संघर्ष के विचार को मजबूती मिली। उन्होंने अन्याय का सामना हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य और शांतिपूर्ण प्रतिरोध के माध्यम से करने का रास्ता अपनाया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी अफ्रीका में उनके अनुभवों ने समानता और अन्याय के विरोध उनके विचारों को गहराई से प्रभावित किया।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी 1915 में भारत लौटे। इसके बाद उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों की यात्राएं की और आम लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया।
0: जी हाँ,
1: किसान, मजदूर, गरीब और सामान्य नागरिक उनकी सार्वजनिक जीवन के केंद्र में आने लगे, और 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनके भारत में शुरुआती महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है।
0: बिल्कुल,
1: इसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद जैसे आंदोलन में भी उन्होंने जनता के साथ काम किया। गांधी जी का संघर्ष केवल, श्रोता साथियों, अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने तक सीमित नहीं था। वे समाज में स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास, स्वदेशी सामाजिक समानता और सामुदायिक सद्भाव जैसे विषयों को भी महत्वपूर्ण मानते थे।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि देश की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं है। जब तक समस्या सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में जिम्मेदारी, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान नहीं लाएगा, तब तक स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो अधूरा माना जाएगा।
0: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं श्रोता साथियों कि गांधी जी, शिक्षा ने गांधी जी को केवल एक पेशेवर व्यक्ति नहीं बनाया, बल्कि आगे चलकर उन्होंने अपने अनुभवों से जीवन के अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी सीखे।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, गांधी जी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जहाँ 1893 में वे एक कानूनी कार्य के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे।
1: बिल्कुल,
0: वहाँ जैसा कि आपने बताया कि उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था, इसी अनुभव से श्रोता साथियों, उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कदम बढ़ा दिया। वहीं उन्होंने वहाँ भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष भी शुरू किया, और यहीं से उनका सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों को लेकर एक व्यवस्थित, कह सकते हैं कि आंदोलन शुरू हुआ।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं कि गांधी जी का पूरा जीवन कुछ मूल सिद्धांतों पर आधारित था। वो था सत्य, जो कि उनका कहना था कि हमेशा हमेशा सत्य बोलना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: अहिंसा, हिंसा के बिना कह सकते हैं कि शांति का मार्ग अपनाना जरूरी है। सादगी की अगर बात करें तो सरल जीवन जीना उनका मुख्य सिद्धांत था। साथ ही वह स्वदेशी को भी बढ़ावा देते थे। उनका मानना था कि स्थानीय वस्तुओं और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले, ताकि रोजगार के अवसर भी बढ़े। साथ ही उन्हें स्वच्छता को लेकर भी काफी जोर दिया था अंजलि जी।
1: जी जी,
0: उनका कहना था कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता को महत्व देना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, गांधी जी के आंदोलन में 1930 की दांडी यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 240 मील की यात्रा की और नमक कानून के विरोध में समुद्र के पानी से नमक बनाया।
0: बिल्कुल,
1: ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ नागरिक अवज्ञा का प्रतीक बना। इस यात्रा की खास बात यह थी कि गांधी जी ने एक सामान्य सी वस्तु नमक को जनता के अधिकार और स्वतंत्रता के सवाल से जोड़ दिया।
0: जी हाँ,
1: बड़ी संख्या में लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के विरोध भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और इस आंदोलन का संदेश था कि अब भारत को स्वतंत्र होना चाहिए। आंदोलन के दौरान गांधी जी सहित अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी का जीवन लगातार संघर्ष यात्राओं, आंदोलनों और जेल यात्राओं से गुजरता रहा, लेकिन इन सब के बीच सत्य, अहिंसा उनके विचार का महत्वपूर्ण आधार बनी रही। गांधी जी के जीवन की एक विशेष बात यह है कि वह सादगी पर जोर दिया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी अनेक चीजों को छोड़ने का प्रयास किया जिन्हें वे अनावश्यक मानते थे। वे साधारण वस्त्र पहनते थे, स्वयं श्रम करते थे, आत्मनिर्भरता पर जोर देते थे। वे चरखे और खादी को केवल कपड़े से जोड़ते नहीं थे, उनके लिए स्वावलंबन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी उनका जुड़ाव जो था उनके अलग विचार थे। गांधी जी का मानना था कि अगर गांव मजबूत होंगे, स्थानीय स्तर पर रोजगार और उत्पादन बढ़ेगा, लोग अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे तो समाज अधिक आत्मनिर्भर बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी ने स्वच्छता को भी बहुत महत्व दिया। वे स्वयं सफाई के काम को छोटा नहीं मानते थे और समाज में श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने की बात करते थे। आज जब हम स्वच्छ गांव, स्वच्छ घर, स्वच्छ सार्वजनिक स्थानों की बात करते हैं तो गांधी जी के स्वच्छता संबंधित विचारों को भी याद किया जा सकता है। गांधी जी के लिए अहिंसा का अर्थ था कि हमें किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना ही नहीं, बल्कि हमें अपने विचारों से भी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आज हमारे परिवारों और गांव में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाते हैं। ऐसे समय में गांधी जी की सीख को अपने जीवन में उतारने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम पहले दूसरों की बात सुने, गुस्से में निर्णय न ले और समस्या का समाधान बातचीत से खोजने का प्रयास करें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का जीवन हमें यह सीख देता है कि किसी व्यक्ति की मानता उसके पद या शक्ति से नहीं बल्कि उसके विचारों के, कर्मों और समाज के प्रति योगदान से होती है। श्रोता साथियों, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया था और इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: बिल्कुल, तो कशिश, जैसा कि कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर हम जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को लेकर ढेर सारी बातों को, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने गांधी जी के जीवन परिचय को बहुत अच्छी तरीके से जाना, यही अब बात करें लाल बहादुर शास्त्री सादगी में छिपी दृढ़ता की। तो श्रोता साथियों, 2 अक्टूबर का दिन हमें लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी याद दिलाता है। उनका जन्म आज के दिन 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था।
1: बिल्कुल,
0: बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता और बहुत छोटी उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।
1: बिल्कुल,
0: शास्त्री जी महात्मा गांधी जी की विचारों से प्रभावित थे। केवल 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया।
1: बिल्कुल,
0: बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। ब्रिटिश शासन के दौरान वे कई बार जेल गए और कुल लगभग 7 वर्ष जेल में रहे। आजादी के बाद श्रोता साथियों, उन्होंने सरकार में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई और 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे।
1: बिल्कुल,
0: उनकी पहचान कशिश केवल प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं बल्कि सादगी और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में भी बनी। रेल मंत्री रहते हुए बड़ी रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारियां लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में उनके इस्तीफे को संवैधानिक जिम्मेदारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया था।
1: बिल्कुल,
0: शास्त्री जी का जीवन हमें बताता है कि बड़ा पद व्यक्ति को बड़ा नहीं बनाता, व्यक्ति अपने आचरण, जिम्मेदारियों और मूल्यों से बड़ा बनता है।
1: जी बिल्कुल,
0: उनकी सादगी आज भी ये सवाल हमारे सामने रखती है कि क्या हम अपने बच्चों को केवल आगे बढ़ने की सीख दे रहे हैं या सही तरीके से उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम अगर बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी का सबसे प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान। श्रोता साथियों, इस नारे के माध्यम से उन्होंने देश के सैनिकों और किसानों के महत्व को सामने रखा।
0: बिल्कुल,
1: सैनिक जो है वो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं जबकि किसान जो है वो देश के लोगों के लिए अन्न पैदा करते हैं। अंजलि जी, शास्त्री जी दोनों की राष्ट्र की शक्ति का एक महत्वपूर्ण दोनों को मानते थे। उनके प्रधानमंत्री बनने के समय देश को खाद्य संगठन संकट और सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने श्रोता साथियों किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया और देश को आत्मनिर्भर

0: बढ़ाने पर भी जोर दिया।
1: बिल्कुल।
0: वहीं अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी के कार्यकाल में ही 1965 को एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस कठिन समय में उन्होंने देश का दृढ़ नेतृत्व किया, उन्होंने भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया और देशवासियों से एकजुट होकर राष्ट्र के साथ खड़े रहने का आह्वान किया।
1: बिल्कुल कशिश, अगर गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन को हम ध्यान से देखें तो दोनों के जीवन में परिस्थितियां अलग थी, लेकिन कुल मूल्य समान दिखाई देता है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार बनाया तो शास्त्री जी ने सादगी, मेहनत और जिम्मेदारी को अपने व्यवहार में उतारा। दोनों के जीवन में दिखावा कम और कर्म अधिक है। आज हम अपने बच्चों को कह सकते हैं कि अच्छे अंक लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, आगे बढ़ो और सफल बनो, लेकिन क्या हम उनसे यह कभी कहते हैं कि सफल होने के साथ ईमानदार रहना, अपनी गलती स्वीकार करना, दूसरों का सम्मान करना, मुश्किल समय में धैर्य रखना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: यही वह जगह है जहाँ महापुरुषों की याद इतिहास से निकल कर संस्कार बनती है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आज हम जो दोनों महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं उसका सीधा सा मतलब यही है कि इन दोनों ने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारे संघर्ष किए, जो कुरूतियां थी वो दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन आज इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि कशिश यही होगी कि हम भी अपने जीवन में इन्हीं सारी चीजों को स्थान दें। आज हम स्वराज की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों की बात करते हैं कि हम समानता रखेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सी बार हम देखते हैं कि हमसे फिर भी ये सारी चीजें हो जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि कहां हम चूक करते हैं, हमें भी किस तरीके से अपने जीवन को सादगी, सत्य, ईमानदारी के साथ जीने की जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: यही जैसा कि हमने कशिश कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि यादों से संस्कार तक श्राद्ध पक्ष का जीवन में हमारे बहुत ज्यादा महत्व है। तो अब हम बात करते हैं श्राद्ध पक्ष की। तो भारतीय परंपरा में पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और स्मरण का समय माना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इस दौरान श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसी परंपराएं निभाई जाती हैं। भारत सरकार के पर्यटन पोर्टल पर भी पितृपक्ष को पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा के रूप में वर्णित किया गया है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर हम इसे केवल एक धार्मिक कर्मकांड के रूप में देखें तो इसके सामाजिक और पारिवारिक अर्थ का एक बड़ा हिस्सा छूट जाता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों सोचिए कि हम जिस घर में आज रहते हैं, जिस खेत में आज फसल उगाते हैं, जिस परिवार का हिस्सा हैं, जिस भाषा में बोलते हैं, जिन परंपराओं को जानते हैं, इन सब के पीछे कई पीढ़ियों का योगदान छिपा है।
0: बिल्कुल।
1: हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और उनसे पहले की पीढ़ियों ने अपने जीवन में कठिनाइयां देखी, संघर्ष किए, परिवार संभाला और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते बनाए। श्राद्ध पक्ष हमें कम से कम इतना समय देता है कि हम रुक कर उन्हें याद करें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो जैसा कि श्रोता साथियों श्राद्ध शब्द का संबंध श्रद्धा से माना जाता है, इसका मतलब है सम्मान और श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों का स्मरण करना।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में श्राद्ध पक्ष से जुड़ी परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं। कहीं तर्पण किया जाता है, कहीं पिंडदान, तो कहीं भोजन कराया जाता है, तो कहीं जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाती है।
1: जी जी।
0: श्रोता साथियों, इन परंपराओं के पीछे मुख्य भावना है जिन लोगों ने हमारे जीवन की नींव रखी उन्हें कृतज्ञता के साथ याद किया जाए।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, पूर्वजों को याद करने का अर्थ केवल उनके नाम पर कोई विधि करना नहीं, उनके जीवन को जानना भी उनका सम्मान है।
0: बिल्कुल।
1: हम अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि हमारे परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग कौन थे, उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया, हमारे गाँव से पहले खेती कैसे होती थी, घर में कौन कौन सी पुरानी परंपराएं थी, किस बुजुर्ग ने परिवार को कठिन समय में भी संभाला था और कौन सी ऐसी सीख थी जो दादा दादी बार बार दिया करते थे। जब बच्चे इन सवालों के जवाब सुनते हैं तो उन्हें अपने परिवार की जड़ों का पता चलता है और यही यादें संस्कार में बदलती हैं। आज के समय में बच्चों की दुनिया मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया से भरी हुई है। इनमें कोई बुराई नहीं, लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि बच्चा अपने परिवार की कहानी से जुड़ा रहे। कई बुजुर्गों के पास ऐसी जानकारी होती है जो किसी किताब में नहीं मिलती। उन्हें पता होता है कि गाँव में पहले पानी कैसे बचाया जाता था, कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती थी, कठिन समय में परिवार एक दूसरे की मदद कैसे करता था, पुराने समय में कम संसाधनों में घर कैसे चलता था, त्योहार और पारिवारिक परंपराएं कैसे निभाई जाती थी। इन अनुभवों को बच्चों तक पहुंचाना केवल पुरानी बातें बताना नहीं है, ये पीढ़ी के बीच संवाद कायम रखना भी है।
0: बिल्कुल,
1: हम अक्सर विरासत का मतलब संपत्ति से लगाते हैं, लेकिन असली विरासत इससे कहीं बड़ी होती है। ईमानदारी भी विरासत है, मेहनत की आदत भी विरासत है, दूसरों की मदद करने की भावना भी विरासत है, परिवार को साथ लेकर चलना भी विरासत है, गांव, खेत, पानी, पेड़ और प्रकृति के प्रति सम्मान भी विरासत है। किसी दादा ने अपने पोते को सिखाया कि पानी कभी व्यर्थ नहीं बहना है, तो ये विरासत है। किसी माँ ने अपनी बेटी को सिखाया कि मुश्किल समय में घबराना नहीं है, तो ये भी विरासत है।
0: बिल्कुल,
1: किसी पिता ने अपने बेटे को सिखाया कि मेहनत की कमाई का सम्मान करना, तो ये भी विरासत है। इसलिए श्राद्ध पक्ष हमें केवल अतीत की ओर देखने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह सोचने का अवसर भी देता है कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है कार्यक्रम के माध्यम से, ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: श्रोता साथी, उस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातचीत कर रहे हैं यादों से संस्कारों तक श्राद्ध पक्ष के जीवन में महत्व को लेकर, तो अंजलि जी, आज का जो ये हमारा विषय है वो थोड़ा भावुक भी है, गहरा भी है और हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ भी है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के हमारे बीच न रहने के बाद भी खत्म नहीं होते। उनका साथ उनकी बातों में, उनकी सीख में, उनकी आदतों में और हमारे संस्कारों में बना रहता है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष भी हमें कुछ ऐसा ही याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज केवल हमारे परिवार का अतीत नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारे परंपराओं और हमारे संस्कारों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि किसी दिव्यंगत व्यक्ति को याद करने का सबसे सुंदर तरीका यह हो सकता है कि उसके किसी अच्छे गुण को अपने जीवन में जगह दी जाए।
0: बिल्कुल,
1: अगर हमारे दादा ईमानदार थे तो हम ईमानदारी को आगे बढ़ाएं। अगर हमारी दादी जरूरतमंद की मदद करती थी तो हम किसी जरूरतमंद की मदद करें। अगर हमारे परिवार के बुजुर्ग प्रकृति और पशु पक्षियों का ध्यान रखते थे तो हम भी ऐसा करें। इस तरह एक व्यक्ति भले हमारे बीच न रहे, लेकिन उनके संस्कार हमारे व्यवहार में जीवित रह सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही यादों से संस्कारों तक की यात्रा है। आज का ये संयोग हमें एक सुंदर बात समझाता है कि गांधी जी को याद करना केवल उनकी तस्वीर लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। शास्त्री जी को याद करना केवल उनके नारे दोहराने तक सीमित नहीं होना चाहिए और अपने पूर्वजों को याद करना भी एक दिन की रस्म तक सीमित नहीं होना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: सच्चा सम्मान तब है जब जिस व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं उसके अच्छे मूल्यों का कुछ हिस्सा अपने जीवन में उतारे।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी की तरह सत्य के प्रति ईमानदार रहें, शास्त्री जी की तरह जिम्मेदारियों को महत्व दें और अपने पूर्वजों की तरह परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा छोड़कर जाएं।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि महापुरुषों की याद, अपने पूर्वजों की याद और उन मूल्यों की याद जिन्होंने हमें समाज और परिवार से जोड़कर रखा है। समय बदलता है, जीवन जीने के तरीके भी बदलते हैं, नई पीढ़ी की जरूरतें भी बदलती हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन सत्य, मेहनत, सादगी, सम्मान, जिम्मेदारी और कृतज्ञता जैसे मूल्य कभी पुराने नहीं होते।
0: जी हाँ,
1: श्राद्ध पक्ष हमें अपनी जड़ों की ओर देखने का अवसर देता है। गांधी जयंती हमें अपने आचरण को देखने का अवसर देती है और शास्त्री जयंती हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को याद करने का अवसर देती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आज किसी एक बुजुर्ग की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाइए। घर के किसी पुराने सदस्य से उसके बचपन और परिवार के बारे में पूछिए और अपने बच्चों से पूछिए कि वे अपने परिवार में कौन सी अच्छी बात आगे ले जाना चाहते हैं।

0: जैसे कोई पुराना सामान हमें बीते समय में ले जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और कभी किसी त्योहार या पारिवारिक परंपरा के दौरान हमें लगता है कि हमारे अपने आज भी हमारे साथ हैं। और यही यादें अंजलि जी धीरे धीरे हमारे संस्कार में बदल जाती है। हम देखते हैं कि श्राद्ध शब्द का संबंध श्रद्धा से ही माना जाता है और इसका मतलब भी यही है कि पूर्वजों को सम्मान दिया जाए और श्रद्धा के साथ याद किया जाए। अलग अलग परिवारों क्षेत्रों में श्राद्ध पक्ष को लेकर अलग अलग परंपराएं होती हैं। कुछ लोग इस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान पुण्य जैसे कार्य करते हैं। कह सकते हैं अंजलि जी की इन सभी परंपराओं के पीछे एक ही भावना है, वो है जिन लोगों ने हमारे जीवन की नींव रखी उन्हें कृतज्ञता के साथ याद किया जाए।
1: बिल्कुल कशिश, किसी भी महापुरुष का जीवन केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं होता बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आईना होता है।
0: बिल्कुल।
1: गांधी जी का जीवन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने विचारों को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन और संघर्षों का हिस्सा बनाया।
0: बिल्कुल।
1: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। छोटी सी असहमति कभी कभी बड़े विवाद में बदल सकती है।
0: बिल्कुल।
1: सफलता की दौड़ हमें कई बार मूल्यों को पीछे छोड़ने देती है और अपनी जरूरतों से अधिक चीजों को पाने की इच्छा बढ़ाई जाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: ऐसे समय में गांधी जी के विचारों को हमें याद करना और ठहर कर अपने व्यवहार का विचारों में असर देना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: उनकी सीख का महत्व हमारे घर से ही शुरू हो सकता है। बच्चों को गलती होने पर सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार में एक दूसरे की बात धीरे से सुनना, घर और आसपास की सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझना, स्थानीय चीजों और श्रम का सम्मान करना, ये छोटी छोटी बातें समाज में बड़े बदलाव की नींव रख सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों से यही कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आज गांधी जयंती, शास्त्री जी की जो जयंती है, उन्हें समझना है और हमारे पितरों का सम्मान करना है।
0: बिल्कुल।
1: समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी
0: तो
1: हाँ,
0: आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
1: और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं और आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है अनाड़ी, गीत के बोल हैं क्या मौसम आया है। इस गीत को आवाज दी उदित नारायण जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशा सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़की जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी और ईशान जी चीपा। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारेश मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। बल्लारी छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं नितेश कुमार देवगाना, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही क्या मौसम आया है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुडवारा से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करता है शमशिल कमर राही, साहिन फातिमा, अजान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम जी अंसारी। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। इसे भी जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद राजेंद्र जी वर्मा। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: दांतों के डॉक्टर कहते हैं कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ सड़न से बचाएं, समझे?
1: उठा लेना इसको, उठा ले कोलगेट।
2: बॉस जिंदा हो।
3: अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेलीवाला सीम। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। इस गीत को आवाज दी है अनुराधा जी ने और उदित नारायण जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पटिया कला दुर्ग से संजय कुमार शाहू, सजिता शाहू, शुशांक शाहू, सीमाजी शाहू। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। ऐसे भी जुड़ना चाह रहे नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण इगले, सोपान इगले, आशीष मेहकर जी। इस गीत के अनुरोध करता है पत्रोट से विजय अंबाटेकर, सुनीता अंबाटेकर, अक्षय अंबाटेकर, राधिका अंबाटेकर, ऋषिकेश जी अंबाटेकर। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। इस गीत को आवाज दी अनुराधा जी ने और उदित नारायण जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं साथियों के फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकट रेडियो 90.8 FM पर।

डाल स्किन। आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दादरी गेट भवानी से। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए, गीत के बोल हैं हम बने तुम बने। इस गीत की फरमाइश करता है कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुनहाल जी मेहरा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे, मुरादाबाद से माया देवी, ऋतिक, अदिति जी का साना। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से अभिजीत कणकर, सरिता कणकर, प्रणीना जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा देवी शर्मा, सार्थक जी शर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजार, नरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, सनिता पुष्पा श्रीवास, संजीविता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत रामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। सलार पिलगाम कश्मीर से जुड़ना चाह रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नसमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं हम बने तुम बने। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आई श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जाखोत राजस्थान से। फिल्म का नाम है परिवार, गीत के बोल हैं आज 2 अक्टूबर का दिन है। इस गीत की फरमाइश करता है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं नेहरू चौक पेठन से, डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बीबी सिया जाधव जलाना शहर से जुड़ रही हैं, सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जी यादव, एकता जी यादव और संगीता जी यादव। इस गीत के अनुरोध करता है झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बीबी चाहत और सादिया जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से रानी मानकर, राम मानकर, सुरभि मानकर, केदार मानकर। इस गीत के अनुरोध करता है भागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल ही आज 2 अक्टूबर का दिन है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए साथियों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सदर बाजार बिलाड़ा राजस्थान से। फिल्म का नाम है बालक, गीत के बोल ही सुन ले बापू यह पैगाम। इस गीत की फरमाइश करता है रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतिजी चौहान। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका जी दली। पुनावली पुणे से जुड़ रहे हैं अजय सोनवानी, करिश्मा सोनवानी, अविका सोनवानी, विशाखा सोनवानी जी। इस गीत के अनुरोध करता है बोरखेड़ा पित्रामल सी विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहटा, दीक्षा घोष जी पवार। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं सुन ले बापू ये पैगाम। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कलानूर सिंह। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, गीत के बोल ही पल देसी जाना नहीं। इस गीत की फरमाइश करता है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही मेराब जहां। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, जिया हक डावर जी और मोहम्मद उमर डावर जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल ही परदेसी जाना नहीं। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकई रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला रोजाना हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। जैसा कि आज भी ये सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था, जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और इसे आगे आप सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो दोस्तों, फरमाइशों के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते हुए मैं जुड़ चुकी हूं आप सभी के साथ और बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना परदेसी परदेसी जाना नहीं, जो कि राजस्थानी राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत था श्रोता साथियों, इसी बीच अगली फरमाइश हमारे बीच खंडवा से आई है। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। इस गीत को आवाज़ दी है सपना अवस्थी जी और सुखविंदर सिंह जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जिया उलक रहमान डावर, छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं सोहन जोशी जी, डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी, अजमारस अंसारी, शबनम बानो जी, बक्सर से एजिराज खातून अंसारी, फातिमा नाज अंसारी जी, दिल्ली से जुड़ रहे हैं सोना मदीबा दानिश अंसारी, और छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं प्रभा रानी चामोरिया जी। इसी बीच अनुरोध करता इंदौर मध्य प्रदेश से भी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयागराज चौधरी जी, लड्डू देविका चौधरी जी। बागपत से जुड़ना चाह रहे जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधर नूतन, रामनंद कश्यप जी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमन सुमन देवी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है नेपानगर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है मैं आपको बताना चाहूँगी विजय पथ। गीत के बोल हैं राह में उनसे मुलाकात हो गई। इस प्यारे से गीत का आवाज़ ही कुमार सानू जी, अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं मजनू का टिल्ला से भी। फरमाइश करता इसी गीत के कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक जी। चौकनटी बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं मोहम्मद सिद्दबासी, निखत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। नादुरा से हैं संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर कटक जी। नासिक से विशाल गवली, सोनाली गवली, समर्पण गवली जी और भक्ति गवली जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। राजस्थान जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं राह में उनसे मुलाकात हो गई।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही बड़ा सा गीत था, इस गीत के बाद अगर हम फिर से हमारी फरमाइश के गीतों को आगे बढ़ाएं और बढ़े अगली फरमाइश की ओर, तो दोस्तों अगली फरमाइश आई जोधपुर राजस्थान से। फिल्म का नाम है फिजा, गीत के बोल है आजा माहिया। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं, बताना चाहूंगी जोधपुर राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो जुड़ रहे हैं। सुनना चाहते हैं इसी गीत को एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कगड़ा, बबीता बोट, निखिल कगड़ा, तन्वी बोट और भी दोस्त जुड़ रहे हैं। सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोज डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। बड़ापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नाइक, अंकिता जोशी, वेदही जोशी। लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं आजा माहिया। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगले फरमाइश के गीत की और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। मैं आपको बताना चाहूँगी, फिल्म का नाम है बंटी और बबली, गीत के बोल हैं कजरा रे। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं कालेगांव जफराबाद से सुधाकर राजी जादव, प्रशांत राजी जादव, जगुताई राजी जादव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणय देशमुख, सरवत देशमुख, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणय देशमुख जी। गंजरुद्वारा से जुड़ रहे मोहम्मद यासिन हाशमी, बेगम हाशमी, तौसिफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी जी। मुंगेरी पेठन महाराष्ट्र से जुड़ रहे बाबा साहेब कंगणक्कर, सागरबाई कंगणक्कर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी कंगणक्कर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। जज्जा हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत मयंक भाटिया। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं कजरारे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथी, उस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है सहारनपुर से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, मैं बताना चाहूंगी आप सभी को, बाजीगर। गीत के बोल हैं बाजीगर और बाजीगर। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे सैयद मसूर, साइना अक्सर, नाजमा आफिया, इब्राहिम सद्दाम जी और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। नादेड़ यतला महाराष्ट्र से हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णय जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, राखी तृप्ति जायसवाल। बत्ता परिवार से जुड़ रहे हैं पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक वंश बत्ता जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं बाजीगर ओ बाजीगर। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता, उस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बत्ता परिवार पटियाला से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों आपको बताना चाहूंगी, जिसमें गीत के बोल हैं आवारापन बंजारापन। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक वंश बत्ता जी। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूंगी। वसीम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरेश, सुषमा सुरदे, पदेश्वर से, मायरा श्रोसे जी। गाजियाबाद से शिषपाल अकेला, तेजपाल प्रजापति जी। महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं नासिर शेख, नाजिर नासिर, शाजिद शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखल मुजावर जी। मंगल रोड छत्तीसगढ़ से फतेश कुमार देवान चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, फनीश कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन छत्तीसगढ़ से श्रोता साथी जुड़ रहे हैं। मुरादाबाद उद्दुलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू श्री, राजपाल पंकज, चालल सीमा, मानवी तन्वी, लक्सोहिनी, मोहरतिक, बलवीर सिंह जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आवारापन बंजारापन।

सर आशुतो सर अंसारी नसीन अंसारी नौरिन आसना मोहम्मद कैफ अंसारी जी और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगे महेश प्रगेश प्रीतेश संगे पूरा संगे परिवार अकोट से हैं विनायक बेंडे मंगला बेंडे शिवम पवन चरिए संजीव डाबे राव जी सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा पूनम ज्योतिष शिवांश वर्मा फजिलका पंजाब से सुभाष गोदरा इंदु पार्वती हिमांशु गोदरा जी और भी हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर सदानंद मंदुरकर कुमार गुरु मंदुरकर यवतमाल निशा रानी नागरिका नीलेश नागरिका राधा अर्पिता जी महाराष्ट्र से किशोर वड़तकर शिवम वड़तकर पुन्नू वड़तकर जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं आपको नाम बताना चाहूँगी कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर सावित्री देवी ठाकुर कमल सिंह ठाकुर ईश्वर सिंह ठाकुर विश्व ठाकुर छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज अनित राज सुमित सोमो मानस राज जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कनेजा पुनम गगेजा विशाल प्रिया दिशा निमित आहूजा जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी अर्चना जोशी हरमिंदर सिंह चावला बानी चावला चंदूला श्रीवास अनिता पुष्पा श्रीवास अंजू योगिता श्रीवास रंजन साहू हेमंत नामदेव जी धर्मदास वाधवानी जी तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को गीत के बोल हैं कहो ना कहो आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि इसी गीत के साथ ही हम आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश को समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: आदत ही नहीं सुधर रही।
1: अच्छा सीमा, और तुमने उसे क्या समझाया?
0: क्या समझाती, दो बार प्यार से बोला, फिर गुस्सा आ गया, कह दिया अगर दोबारा गंदगी फैलाई ना तो सारे खिलौने उठाकर बाहर फेंक दूंगी। लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
1: सीमा एक बात पूछो।
0: हाँ पूछो।
1: जब तुम घर में झाड़ू लगाती हो, बर्तन साफ करती हो और हर चीज अपनी जगह पर रखती हो, तो क्या वह तुम्हें देखता है?
0: हाँ देखता तो है, कई बार तो मेरे पीछे पीछे घूमता भी रहता है।
1: बस वहीं से तो सीख शुरू होती है। बच्चे हमारी बातें सुनते जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारे कामों को देखते हैं। अगर हम खुद घर की साफ सफाई रखेंगे, चीजों को जगह पर रखेंगे और कूड़ा है वो कूड़ेदान में डालेंगे, तो बच्चा भी धीरे धीरे यही व्यवहार सीखता है।
0: बात तो तुम्हारी सही है बहन, लेकिन छोटा बच्चा है ना, उसे कैसे समझ में आएगा कि सफाई क्यों जरूरी है?
1: समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। बस हमें उसकी उम्र के हिसाब से समझाना होगा। उसे यह नहीं कहना है कि तुम गंदे हो या तुम्हें कुछ नहीं आता, बल्कि खेल खेल में सिखाना होगा कि हमारा घर साफ रहेगा तो हम सब स्वस्थ और खुश रहेंगे।
0: अच्छा, यह तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। मैं तो बस उसे डांट देती हूँ।
1: अरे सीमा, डांटने से बच्चा उस समय तो चुप हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह आदत को समझ भी जाए। उसे काम में शामिल करो, जैसे खिलौने समेटने में मदद मांगो, रेपर कूड़ेदान में डालने को कहो, और जब वह सही काम करे तो तुम थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दिया करो।
0: हाँ बहन, तुमने सही कहा, आज से मैं यही कोशिश करूँगी। कमला बहन, एक बात और है, मेरा बेटा कभी कभी गुस्से में दूसरे बच्चों को मारने लगता है। कोई इसका खिलौना छू ले तो धक्का दे देता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, आखिर उसे कैसे समझाऊं कि किसी को मारना गलत है?
1: देख सीमा, बच्चों को गुस्सा आना अपने आप में एक सामान्य बात नहीं है। छोटे बच्चे कई बार अपनी बात शब्दों से नहीं कह पाते हैं, इसलिए रोकर चिल्लाकर या हाथ चलाकर अपनी नाराजगी को जताते हैं। ऐसे समय में हमें पहले उसका गुस्सा समझना चाहिए और फिर उसे सही तरीका हमें सिखाना चाहिए।
0: लेकिन जब वह किसी को मारता है तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता है। कभी कभी तो मन करता है कि उसे भी मैं थप्पड़ लगा दूं, ताकि उसे समझ में आए कि मारने से कितना दर्द होता है।
1: अरे नहीं बहन, ये तो हमें ध्यान रखना है। अगर हम बच्चे को मार कर समझाएंगे कि मारना गलत है, तो वह क्या सीखेगा? उसके मन में तो यही बात बैठेगी कि ताकतवर व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए ही मार सकता है।
0: तो फिर उस समय क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले शांत रहना चाहिए, प्यार से लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए, बेटा गुस्सा आ सकता है, लेकिन किसी को मारना, धक्का देना या चोट पहुंचाना सही नहीं है। अगर तुम्हें खिलौना चाहिए तो बोल कर मांगो, अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो हमें बताओ।
0: यानी कि गुस्सा करने से मना नहीं करना, बल्कि गुस्सा जताने का सही तरीका सिखाना है।
1: बिल्कुल, अहिंसा का मतलब केवल किसी को नहीं मारना नहीं है, इसका मतलब है कि हम अपने शब्दों और व्यवहार से किसी को चोट नहीं पहुंचाएं। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि किसी का मजाक उड़ाना, कमजोर बच्चों को परेशान करना, जानवरों को पत्थर मारना या किसी को डराना गलत व्यवहार है।
0: हाँ, कई बार बच्चे खेल खेल में छोटे जानवरों को परेशान करते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो मजाक है।
1: हाँ सीमा बोन, इसीलिए उन्हें समझाओ कि जानवरों को भी दर्द होता है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के प्रति दया रखना अच्छे संस्कारों का हिस्सा है। जब बच्चा किसी घायल पक्षी को देखकर उसकी मदद करना सीखता है या किसी छोटे बच्चे के साथ खिलौना बांटता है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि संवेदनशीलता है वो विकसित होती है।
0: और अगर दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हो तो?
1: तब भी किसी एक को दोषी ठहराने की बजाय हमें दोनों बच्चों की बात सुन लेनी है। बच्चों को बारी बारी से बोलने देना है, उन्हें बताना चाहिए कि समस्या का हल बातचीत से निकल सकता है। जब हम अपने बच्चों को शांतिपूर्ण अपनी बात को रखना सिखाते हैं सीमा बहन, तो वे एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना सीखते हैं।
0: अच्छा, अब समझ आया। केवल ये कह देना कि अच्छे बच्चे लड़ते नहीं है काफी नहीं है, हमें उन्हें ये भी सिखाना होगा कि नाराजगी होने पर क्या करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही, अहिंसा की पहली सीख घर में तभी मिलती है जब परिवार के लोग एक दूसरे से सम्मान पूर्वक बात करते हैं और भेदभाव होने पर भी अपशब्दों का

0: सहारा नहीं लेते हैं।
1: कमला बहन, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब मैं अपने बेटे को सफाई के कामों में भी शामिल करूंगी। लेकिन बच्चे तो थोड़ी देर काम करते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। ऐसी आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बनाए रखें?
0: देखो सीमा, अच्छी आदतें एक दिन में नहीं बनती हैं। उन्हें रोज दोहराना पड़ता है, जैसे सुबह उठकर हाथ मुंह धोना, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ साफ करना, शौचालय का उपयोग करने के बाद साबुन से हाथ धोना और अपने आसपास गंदगी न फैलाना। ये बातें हैं वो हमें बच्चों को रोज सिखानी चाहिए।
1: अच्छा, सही कह रही हो तुम। कई बार बच्चे खाना खाते खाते इधर उधर चले जाते हैं और हाथ भी ठीक से नहीं धोते।
0: तो सीमा, खाना खाने से पहले हाथ धोने का परिवार में एक नियम आप बना लो। खुद भी उसका पालन करो, बच्चों के सामने हाथ धोते हुए बताओ कि हमारे हाथ पर ऐसी गंदगी और कीटाणु हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। साफ पानी और साबुन से हाथ धोना हमारे सेहत की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है।
1: और घर के कूड़े का क्या? गांव में कई लोग कूड़ा बाहर रास्ते पर या नली के पास ही डाल देते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
0: यह भी हमें बच्चों को समझाने की जरूरत तो है। घर का कूड़ा निर्धारित जगह पर हमें डालना चाहिए। गीले और सूखे कचरे को अलग रखना जहाँ संभव हो वहाँ से शुरुआत हम कर सकते हैं। पानी जमा न होने देना, घर के आसपास सफाई रखना और खुले में कचरा न फेंकना, ये सभी जरूरी है।
1: हमारे यहाँ तो बच्चे कई बार पानी पीकर गिलास वहीं छोड़ देते हैं और खिलौने भी जहाँ खेले वहीं पड़े रहते हैं।
0: तो सीमा, उनकी उम्र के अनुसार हमें छोटी जिम्मेदारियाँ तय करनी है। बच्चा छोटा है तो उससे भारी काम नहीं करवाना है, लेकिन अपना खिलौना टोकरी में रखना, इस्तेमाल के बाद गिलास सही जगह पर रखना, अपनी किताबें समेट कर रखना, जैसे छोटी छोटी आदतें हैं वो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं।
1: अच्छा, यानी घर के सारे काम माँ की जिम्मेदारी नहीं है, परिवार के सभी सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और जब बच्चा देखता है कि घर में माता पिता और दूसरे सदस्य हैं वो सफाई और व्यवस्था में योगदान देते हैं, तो उन्हें समझ आता है कि जिम्मेदारी सबकी होती है। केवल बेटियों को घर का काम सिखाना और बेटों को उससे दूर रखना भी हमारे लिए सही नहीं है। दोनों को समान रूप से अपने काम करना हमें सिखाना चाहिए।
1: ये बात तो बहुत जरूरी है कमला बहन। हमारे घरों में कई बार लड़कों को यह कहकर छोड़ दिया जाता है कि ये काम तो लड़कियों का है।
0: और हाँ सीमा, यही सोच हम देखते हैं कि आगे जाकर उनकी जिम्मेदारियां बांटने में रुकावट बन सकती है। बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, उसे अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए, घर को साफ रखना चाहिए और दूसरों की मदद करना भी हमें सिखाना है।
1: अब मैं अपने बेटे को छोटे छोटे काम दूंगी और खुद भी उसके साथ करूंगी। इससे उससे लगेगा नहीं कि उसे सजा दी जा रही है, बल्कि वह इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा समझेगा।
0: हाँ, और जब वो कोई काम खुद से करे तो उसकी प्रशंसा भी करना जरूरी है हमारे लिए। यह मत कहना कि तुम तो हमेशा गंदगी फैलाते हो, उसके बजाय कहो कि आज तुमने अपना सामान अच्छे से समेटा, मुझे तुम्हारी मदद में खुशी हुई। ऐसी बातें वो बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ा सकती हैं।
1: कमला बहन, एक बात और पूछूं?
0: हाँ पूछो।
1: कई बार मेरा बेटा कोई चीज तोड़ देता है या गलती करता है तो तुरंत दूसरे पर दोष डाल देता है। कभी कहता है कि बिल्ली ने गिराया, तो कभी कहता है कि किसी और ने किया होगा, मुझे क्या पता। क्या यह भी उम्र के साथ ठीक हो जाएगा?
0: हाँ सीमा, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं वो गलती करने के कारण सच बताने से डर जाते हैं। अगर हम गलती पर उन्हें डांटें या सजा दें, तो हम देखते हैं कि वो अपनी गलती ही वो छिपा लेते हैं। इसीलिए घर का माहौल हमें ऐसा बनाना है कि बच्चा सच बोलने में सुरक्षित महसूस करे।
1: लेकिन अगर वह जानबूझकर कोई चीज तोड़ेगा तो क्या उसे कुछ नहीं कहना है मुझे?
0: अरे सीमा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को प्यार से यह समझाना जरूरी है कि गलती का असर क्या हुआ है और उसे ठीक करने के लिए उसकी भूमिका क्या हो सकती है। मान लो उसने पानी का गिलास गिरा दिया, तो पहले उसे सुरक्षित जगह पर करो और काज हो तो खुद साफ कर लो। फिर बच्चे को बताओ कि अगली बार गिलास ध्यान से रखना।
1: यानी कि गलती छिपाने के बजाय उसे सुधारने की आदत डालनी चाहिए।
0: बिल्कुल, जिम्मेदारी का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने काम और व्यवहार के परिणाम को समझें। बच्चों को अपनी गलती स्वीकार करना, माफी मंगवाना और जहाँ तक संभव हो नुकसान सुधारने में मदद करना भी एक सीख हो सकती है।
1: और अगर वह किसी दूसरे बच्चे का खिलौना तोड़ दे तो?
0: तब उसे समझाओ कि दूसरों की चीज का सम्मान करना भी जरूरी है। वह बच्चों से माफ़ी मांग सकता है और खिलौना ठीक करने या उसकी भरपाई करने के लिए उसकी उम्र के अनुसार मदद कर सकता है। इससे वह केवल माफ़ी मांगना नहीं बल्कि अपने व्यवहार और जिम्मेदारी लेना भी सीखता है।
1: सही कहा कमला बहन, और ये जिम्मेदारी केवल घर तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसे गाँव, स्कूल और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल सीमा, स्कूल में कक्षा को साफ रखना, सार्वजनिक जगहों पर कचरा न फैलाना, पानी की बर्बादी रोकना, पौधों की देखभाल करना और जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करना, ये सभी जिम्मेदार नागरिक बनने की छोटी छोटी शुरुआत हो सकती है।
1: हाँ कमला, हमारे गाँव में अगर हर घर अपने बच्चे को ये बातें सिखाए तो पूरा गाँव साफ और सुंदर बन सकता है।
0: और हाँ, सबसे बड़ी बात, बच्चे एक दूसरे को देखकर भी सीखते हैं सीमा। जब मोहल्ले के बच्चे मिलकर पौधे में पानी डालते हैं, खेल के बाद मैदान को साफ करते हैं और झगड़े के बजाय मिल बांटकर खेलते हैं, तो उससे हम देखते हैं कि उनमें सहयोग और अपनापन का जो भाव होता है वो भी बढ़ता है।
1: मुझे लगता है कि अब हमें बच्चों को केवल अच्छे अंक लाने और पढ़ाई करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, उन्हें तो अच्छा इंसान बनने की सीख भी देनी चाहिए।
0: बिल्कुल सीमा, पढ़ाई बच्चों को ज्ञान देती है लेकिन घर और समाज से मिलने वाले संस्कार उसे उस ज्ञान का सही उपयोग करना सिखाते हैं। दया, सम्मान, स्वच्छता और जिम्मेदारी ऐसी आदतें हैं जो उनके पूरे जीवन भर उनके साथ रहती हैं।
1: कमला बहन, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोचती थी कि बच्चा छोटा है, अभी क्या ही समझेगा, लेकिन अब लग रहा है यही तो उसकी सीखने की उम्र है।
0: हाँ बहन, बचपन में ही बच्चों के मन के व्यवहार की नींव पड़ती है। हम उसे प्यार, धैर्य और अपने उदाहरण से कई सारी सीख है वो उन्हें सिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर दिन कोई बड़ी सीख दी जाए, रोजमर्रा के छोटे काम ही उसके संस्कार बनाते हैं।
1: आज से मैं अपने घर में 3 बातें जरूर अपनाऊंगी। पहली ये कि किसी को मारना या अपशब्द कहना नहीं बल्कि अपनी बात प्यार से कहना है। दूसरी ये कि घर और आसपास सफाई रखनी है। और तीसरी ये कि अपना काम खुद करना है और गलती होने पर उसे स्वीकार भी करना है।
0: हाँ सीमा, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही। और साथ में याद रखना कि यह सीख केवल बच्चों के लिए नहीं है, हम बड़ों के लिए भी है। जब हम खुद एक दूसरे का सम्मान करेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, तब बच्चे इन बातों को अच्छे संस्कार के रूप में अपनाएंगे।
1: अब तो मैं चाहती हूँ कि हमारे मोहल्ले की सभी माताएं मिलकर बच्चों के साथ एक छोटा सा स्वच्छता और अच्छे व्यवहार का अभियान शुरू करें। हर रविवार बच्चे अपने आसपास सफाई करेंगे, पौधों की देखभाल करेंगे और मिलकर साथ खेलेंगे।
0: अरे ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन बच्चों पर बोझ बनाकर नहीं, खेल और खुशी के साथ। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि सफाई, अहिंसा, जिम्मेदारी कोई मजबूरी नहीं है बल्कि अपने परिवार और समाज के प्रति प्यार जताने का एक तरीका है।
1: बिल्कुल बहन, आज से हम खुद भी बदलेंगे और बच्चों को भी अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ाएंगे।
0: हाँ सीमा, क्योंकि आज का समझदार, संवेदनशील और जिम्मेदार बच्चा ही आने वाले समय में ऐसा समाज बनाएगा जहाँ लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे और मिलजुल कर साथ रहेंगे।
1: बिल्कुल।
2: तो साथियों, आपने सुना आज का नाटक, जिसमें सीमा और कमला की बातचीत के माध्यम से हमने समझा कि बच्चों के अच्छे संस्कारों की शुरुआत घर के छोटे छोटे व्यवहारों से होती है। बच्चों को अहिंसा सिखाने का अर्थ उसे दूसरों की भावनाओं को समझना, अपनी नाराजगी को सही शब्दों में व्यक्त करना और किसी को चोट पहुंचाए बिना समस्या का समाधान करना सिखाना है। स्वच्छता सिखाने का अर्थ केवल घर में झाड़ू लगवाना नहीं बल्कि अपने शरीर, घर, गांव और प्रकृति के प्रति सम्मान पैदा करना भी है। वहीं जिम्मेदारी का संस्कार बच्चों को अपने काम स्वयं करने, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और दूसरों के अधिकारों पर ध्यान रखने की सीख देता है। याद रखिए कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए महंगे खिलौनों या बड़ी बड़ी सीखों की जरूरत नहीं होती, उन्हें जरूरत होती है हमारे समय की, हमारे धैर्य की और हमारे व्यवहार की। जब घर में बातचीत सम्मान से होती है, काम मिल बांटकर किए जाते हैं, और गलती सुधारने का अवसर दिया जाता है, तब बच्चा धीरे धीरे इन्हीं बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। तो आज जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी बातें रही हैं, आशा करती हूँ कि ये बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बार तेनू खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। बागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा धर की दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ो सो व्यायाम ने तात्कालिक में जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। ओवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहे हो आपनो सामुदायिक रेडियो वगड़ रेडियो 90.8 FM माते। मैं आप सबनो घणी मन स्वागत करू हूँ अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बहनों अमे अमारे टन माते हाजर थे सहू कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथे। तो भाई बहनों आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि खेत ने मिट्टी ने स्वस्थ राखव केम जरूरी है, स्वस्थ मिट्टी हूँ कहवा है, नी मिट्टी ने स्वस्थ रखवाना हूँ एवं पारंपरिक उपाय है जे आपने अपनावा होगा। तो अणवा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी अब तक घना कानी बातें थाएंगा, पर कार्यक्रम शुरू कर इन्हें पहले आपने हमारा विदा गीत मोरे कर अपनी बात है। तो बहन बोनो आप हम बढ़ते रहो आपू रेडियो अपनी बात है वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: લોકોનું ગીત તો આયુષ્યું પૂરું, અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણીમાન સ્વાગત કરો હો અમારે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે વાયનબોનું ગીત કે પહેલા આપણે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે ખેતની મિટ્ટીને સ્વસ્થ રાખવું આપણે બદલે કેમ જરૂરી હે, તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણા કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી માંગીલાલજી. તો સૌ થકી પહેલા આપણે સાંભળી લણાની વાતે મોરે કરા આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર જી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાઘ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: જી ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કી આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે સમય સમય પર જુડતે રહેતે હૈ ઓર ખેતી સે જુડી વિશેષ જાણકારી આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો દેતે હૈ, તો સર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે ખેત કી મિટ્ટી કો સ્વસ્થ રખના ક્યું જરૂરી હૈ ઓર ઇસકે લિયે હમારે કિસાન ભાઈ બહેન ક્યા કર સકતે હૈ. તો સબસે પહેલે આપ હમ યહી બતાઈએ કે ઇસકા આખિરકાર મહત્વ ક્યા હૈ.
1: જી तो देखिए, जो मिट्टी की हम बात करते हैं तो मिट्टी जो खेत की होती है वो खेत का जीवन होती है.
0: बिल्कुल.
1: और वो जीवन जो है, चाहे वो मनुष्य से देखो आप, पैदावार से देखो आप, हर तरीके से मिट्टी का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है. तो हमारे किसान भाई देखते हैं कि खेत की जो मिट्टी है वो केवल एक फसल उगाने का माध्यम नहीं समझिए उसको, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है, आपकी फसल का आधार है. हमें इसको स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है ताकि पोषक तत्व, हवा, पानी तो जड़ों तक आराम से वो जो है पहुंच सके. तो हम क्या है कि जब मिट्टी की बात करते हैं तो जितनी मिट्टी आपकी स्वच्छ होगी, अच्छी होगी, बेहतर होगी, उतना ही पैदावार आपको अच्छा मिलेगा.
0: बिल्कुल.
1: दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे बागड़ की हम बात करते हैं तो खेती लंबे समय से प्रकृति, स्थानीय ज्ञान और उपलब्ध जो संसाधन है उनकी जो आधारित रही है, उन पर हमारे जो पूर्वज थे वो मिट्टी को, प्रकृति को पहचान कर फसल का चुनाव करते थे. खेत में जैविक पदार्थ जो थे वो मिट्टी में डालते थे ताकि उर्वरकता बनी रहे.
0: बिल्कुल.
1: इसके साथ में आप देखोगे कि मिट्टी का संतुलन बनाए रखने के लिए वो बदल बदल कर फसलों का चयन करते थे ताकि उसका संतुलन बना रहे और वो स्वच्छ रहे और जो उसके अंदर पोषक तत्व है वो हमेशा मौजूद रहे.
0: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि मिट्टी का स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है, यही स्वस्थ मिट्टी क्या होती है
1: हम बात करते हैं. तो यहाँ पे क्या कि स्वस्थ मिट्टी का मतलब सीधा सा ये है कि उसके अंदर जो है पोषक तत्व उपस्थित हो, उसके अंदर उर्वरकता है मिट्टी की वो अच्छी हो, और जो जड़ें होती है पौधों की उनका पर्याप्त विकास के लिए हवा और जो नमी है वो उसमें बनी रहे.
0: बिल्कुल.
1: तो वो एक स्वच्छ मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी जहाँ पानी को कुछ समय तक अपने अंदर सोख कर रखती है, आवश्यकता अनुसार वो पौधों को देती रहती है. तो ये क्या होती है, बुरबुरी होती है जिसको हम बोलते हैं ना, तो बहुत बुरबुरी होती है.
0: जी जी.
1: तो अगर बुरबुरी है तो हम समझे कि ये स्वस्थ है और इसमें जो जैविक पदार्थ है वो मौजूद है. तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे जब आप अपने खेत में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि जो मिट्टी है उसमें आपको कुछ जीव नजर आएंगे छोटे छोटे, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि इसमें जो है वो छोटे जीव है वो आपकी मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए काफी बेहतरीन होते हैं.
0: बिल्कुल.
1: इसके साथ में आप जो अपनी मिट्टी का रंग देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता कितनी है और उसमें क्या किया जा सकता है.
0: जी जी.
1: तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारी मिट्टी को.
0: बिल्कुल सर. तो जैसा कि आपने बताया कि स्वस्थ मिट्टी क्या होती है, यही मिट्टी को स्वस्थ रखना हमारी फसल के लिए क्यों जरूरी होता है.
1: देखिए, हम बात करते हैं फसल की तो फसल भी हम चाहते हैं कि अधिक पैदावार हो और जो भी फसल हमारे खेत से आए वो पौष्टिक हो, उसमें पोषक तत्व हो और उसकी गुणवत्ता बेहतर हो. अब इन सब के लिए जो है मिट्टी का स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है. तो स्वस्थ मिट्टी की हम बात करते हैं तो फसल की जो जड़ें होती है वो क्या होती है कि मिट्टी से पानी और पोषक तत्व प्राप्त करती है.
0: बिल्कुल.
1: जो फसल आपने लगाई है, यदि मिट्टी पोषक तत्वों की कमी होगी या असंतुलन होगा तो पौधों की जो वृद्धि है वो प्रभावित होगी. और स्वस्थ मिट्टी पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करती है. अगर वो स्वस्थ नहीं रखेंगे तो उसका विकास नहीं होगा.
0: बिल्कुल.
1: इसी तरह हम देखते हैं कि जो मिट्टी की बात करते हैं तो वो पानी को बचाने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होता है. तो स्वस्थ जो मिट्टी होती है उसमें क्या, जैविक पदार्थ वाली मिट्टी होती है उसमें उसमें क्या होता है कि जो पानी है वो बेहतर क्षमता होती है उसको सोखने की, और जितना पानी वो सोखती है वो धीरे धीरे फिर अपनी फसलों को वो देती रहती है.
0: बिल्कुल.
1: इसी तरह आप देखोगे कि बारिश के दिनों में भी खेत में जो पानी रहता है तो अगर मिट्टी आपकी अच्छी होगी तो उस पानी को अच्छे से सोखेगी और आपकी मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा, और उस स्थिति में क्या होगा कि लंबे समय तक जो नमी है वो बनी रहेगी.
0: जी जी.
1: तो इस तरह से हम जो पानी है उसके लिए भी जरूरी है। और इसमें आप देखेंगे तो मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको बनाए रखने के लिए भी जो है हमारी मिट्टी का स्वच्छ होना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें क्या होता है कि अच्छी मिट्टी की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उर्वरकता है वो काफी अधिक होती है, और उसमें जैसे बोलते हैं बंजर भूमि, तो बंजर होने के चांस बहुत कम रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर आपने उसमें अच्छे से ध्यान नहीं रखा, आपने उसमें जो खाद बीज जो भी आप डाल रहे हैं परंपरागत, उसके अलावा अगर इसमें आप रासायनिक उपयोग करते हैं तो मिट्टी जल्दी बंजर होने का चांस रहता है।
0: बिल्कुल।
1: तो उसका भी हम ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें जैसे गोबर खाद है, वर्मी कम्पोस्ट है, या उकेड़ा है, या हरी खाद है, और हमारे जो फसल के अवशेष होते हैं उनको हमें वहीं छोड़ देना चाहिए, ताकि वो है हमारी मिट्टी को स्वच्छ रखें और वो मिट्टी को अपने पोषक तत्व है वो प्रदान करते रहें।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह आप देखोगे कि जो मिट्टी है उसको जब हम बात करते हैं कि उसको किस तरह से स्वच्छ रखना जरूरी है, तो जब स्वस्थ मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें एक चीज और नजर आएगी आपको कि उसमें क्या होता है कि जीव जंतु है मिट्टी के अंदर वो बहुत होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वो आपका इतना उस मिट्टी को प्रोसेस करते हैं, इतना बेहतर बनाते हैं। जैसे केचुआ आपने देखा होगा, तो केचुआ आगे से खाता है तो पीछे से वो लार्वा छोड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: उसी तरह के छोटे छोटे कीट है वो हमारी मिट्टी में मौजूद होते हैं, तो वो क्या है कि अपनी मिट्टी को खाकर, जो सड़े गले आपके अवशेष है उनको खाकर, आपने गोबर या वो डाला है बर्मी कम्पोस्ट, तो फिर उसको और प्रोसेस करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उससे क्या होता है कि आपकी मिट्टी भुरभुरी रहती है और आपकी फसल है वो बेहतर तरीके से जो है पैदावार देती है।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि मिट्टी को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है, यही बात आती है कि मिट्टी को स्वस्थ रखने के कौन से ऐसे आसान से परंपरागत उपाय हैं जो हम सभी को अपनाने चाहिए।
1: देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज है वो बहुत तरीके अपनाते आए हैं, कुछ अपना भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इनको भूलते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे आप देखेंगे खेत में फसल के अवशेष जो है उनको जलाना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि आजकल आपको लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे फसल के अवशेष है उसको जला देंगे खेत साफ हो जाए, लेकिन वो है जो सही तरीका नहीं है वो, और वो नुकसान होता है आपकी मिट्टी में।
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें क्या है कि जैसे अगर आप उसको वहीं छोड़ देंगे तो वो आपका कंपोस्ट का काम करेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो उनको नहीं जलाना चाहिए। गोबर खाद जो है उसका उपयोग करना चाहिए आपको, कि जैसे अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद है, तो स्थानीय जैविक जो खाद होती है वो क्या है मिट्टी के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, और जो मिट्टी के गुण है उनको बेहतर बनाने में सहायक है।
0: जी जी।
1: इसी तरह जैसे कच्चे गोबर की जगह हमें जो है सड़ा हुआ गोबर डालना। कई बार क्या होता है कि जैसे पशु है उनका गोबर उठा के हम डायरेक्ट खेत में डाल देते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। उसको अच्छे से प्रोसेस होने दे, उसको आप उसको गड्ढे में डालें, उकेड़े में डाल के जब वो पक जाए तब आप फिर उसको डालें।
0: बिल्कुल।
1: एक तरीका ये भी है कि जो फसल है हमारी उसको विविधता को ध्यान में रखें। होता क्या है कि हमारे किसान भाई एक ही फसल को एक ही खेत में बार बार बार बार बोते रहते हैं, इससे क्या होता है कि जो फसलें हैं उनकी जो मिट्टी है वो मिट्टी खराब होने लगती है। जैसे हर वर्ष एक ही फसल बोना, जो फसल चक्र है उसको अपनाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: ताकि हर चीज जो है वो मिट्टी है उसको मिले भी। अगर आपने जैसे मूंग लगाया या आपने कुछ लगाया तो आपको हरी खाद मिलेगी, कार्बन मिलेगा, लेकिन आपने वहां पे सिर्फ मक्का ही मक्का या गेहूं गेहूं किया तो मिट्टी है जल्दी खराब होती है। तो उसका ध्यान रखें हमेशा। खेत को जो है हमेशा खुला न छोड़े। खुला का मतलब ये है कि जैसे हमने खेत की मिट्टी है उसको लंबे समय तक हमने बुआई करके छोड़ दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बुआई भी कर दी तो उसमें फसल का अवशेष या वो जो है उसमें होने चाहिए, ताकि वो हरी खाद का उपयोग करें। तेज बारिश में जो है उसमें हवा को रोकने में और मिट्टी कटाव में मदद करते हैं वो, तो इसलिए उन्हें हमें वहीं छोड़ देना चाहिए, ना कि वो खेत को आप ऐसे ओपन करके छोड़ दिया।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा इसमें एक तरीका और है कि हमारी जो फसल है उसको क्या है कि जब हम मिट्टी को स्वच्छ रखने की बात करते हैं, हमारी मिट्टी है उसको जो है हमें एक तो जो जांच है वो जांच आपको करवा लेनी चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे क्या जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा है क्या कि हमारे जो किसान भाई क्या करते हैं कि बार बार खेत को जुताई करते हैं, उनको लगता है कि बार बार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अनावश्यक जुताई नहीं करनी चाहिए।
0: बिल्कुल सर।
1: क्योंकि जब अनावश्यक जुताई होती है तो आपकी मिट्टी की जो नमी है वो धीरे धीरे बहुत गहराई तक चली जाती है।
0: जी हाँ, तो सर जैसा कि आपने बताया कि मिट्टी को स्वस्थ रखने के क्या आसान से तरीके हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, यही किसान स्वयं मिट्टी की स्थिति को कैसे पहचान सकता है?
1: देखिए, किसान है हमारा जो तरीका है कि हम एक तो मिट्टी को हाथ में लेके आप देखेंगे तो अगर वो बुरबुरी है तो आप समझे कि वो मिट्टी अच्छी है, लेकिन वही मिट्टी अगर आप हाथ में लेंगे बहुत कठोर है, जैसे पत्थर की तरह बन जाते हैं। आप जैसे खेत की जुताई करते हैं हम लोग तो बड़े बड़े पत्थर निकलते, तो आप समझ जाना चाहिए कि वो जो मिट्टी स्वच्छ नहीं है। और अगर वो उसमें बिल्कुल एकदम बुरबुरी हो जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि मिट्टी अच्छी है,
0: स्वस्थ है।
1: हाँ, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। इसके जो एक चीज और है कि जो मिट्टी है उसमें आप जब अवलोकन करेंगे घूमेंगे खेत में तो आपको बहुत सारे छोटे जीव उसमें नजर आए, या आप उसको खोद कर देखिए कुछ जीव मिलते हैं तो समझिए कि आपकी मिट्टी अच्छी है। तो इस तरह से है, आप मिट्टी को देख सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को देख सकते हैं। बारिश के दिनों में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जीव है मिट्टी से बाहर निकलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी मिट्टी में वो अच्छे जीव मौजूद है, इसका मतलब आपकी मिट्टी
0: स्वस्थ है। बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमें ये बताया कि मिट्टी का स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, यही अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, तो मैं सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि मिट्टी को केवल उत्पादन का साधन नहीं समझे, बल्कि जीवित प्राकृतिक संपदा माने और उसकी सेहत की जिम्मेदारी मिलकर निभाए।
0: बिल्कुल, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी धन्यवाद।
0: जिम की भाई बोनू अवड़े आपड़े व्यस्त में मांगीलाल जी जुड़े तक कहा ने एने आपने घनी अचल तरीका तक की घना आका नी बातें बताड़ी है। एने आपने बताड़ू है कि स्वस्थ मिट्टी हूँ कहवा है, ने मिट्टी ने स्वस्थ राखवा बल्ले आपने कई कई चीजों नु ध्यान राखू है, ने एने साथे एने बताड़ू कि मिट्टी स्वस्थ राखवाना हूँ आसान उपाय है जे आपने भाई बहनों ने अपनावा सुवे। तो आशा करो हो कि आ हंगरी बातें आपने गमी होंगा, क्योंकि अभी टाइम थे गयो है आपने अणस कार्यक्रम तक की सूटा पड़वानू, तो सूटा तो पड़ा पण साथे पहले हमरी लायक और गीत ने मोरे पड़ो सूटा।

माइन बनो अनस की थाते कार्यक्रम खेतीवाड़ी ते की पड़ा सूटा। आशा करा हो कि ऐसे कार्यक्रम में हमारी अब तक की जी भी बातें रही ही आपने कमी होगा। तो आपने हमारो आज नवा कार्यक्रम केव लग्यू इन्हें बारा में आप राय सुझाओ अमने आली शको अमरा अड़पता।

आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

तैवो केवाय जैवरे एक बैरू मजबूत बने हैं, तैवरे पूरो परिवार मजबूत बने हैं। पर मजबूती खाली शब्द केवा थकी नती आवती, आवे है अधिकार थकी, सुरक्षा थकी अने आपरे अस्तित्व नी पहचान थकी। जमीन पैसा माते बैरा नु नाम एने हपना नु पहलू पगतियो है। इने मने है आत्मविश्वास, रुपया नी सुरक्षा अने आपरा फैसला खुद लेवानी ताकत। तो आओ बनो आज मलीने आवाज उठावो, એટલે હંગરી સૂર્ય હંગરી બુને હંગરી માય આપણા હકની જમીન માટે ગર્વ થકી ઉભી થઈ શકે। બુનાને અધિકાર, કેમ કે અધિકાર જ અસલી તાકાત હે। વાગડ રેડિયો એવં વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિતને પ્રસારિત।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
0: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज का हमारा विषय है सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज को लेकर। अंजलि, जब किसी गांव के चौपाल पर लोग मिलकर अपने गांव की समस्या पर चर्चा करते हैं, जब किसान अपने खेत और पानी के बारे में स्वयं निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, जब गांव का युवा अपने हुनर से अपने ही क्षेत्र में रोजगार का रास्ता तलाशता है और जब लोग बिना भेदभाव एक दूसरे का साथ देते हैं, तब लोकतंत्र केवल किताबों में नहीं रहता बल्कि जमीन पर भी दिखाई देता है। महात्मा गांधी जी ने ऐसे ही स्वावलंबी, जागरूक और आत्मनिर्भर गांवों का सपना देखा था। उनके लिए स्वराज का अर्थ केवल विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था। श्रोताओं, सच्चा स्वराज तो तब है जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बने, समाज अपने निर्णयों में भागीदारी करे और गांव अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए आगे बढ़े।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और बातें भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती हमें गांधी जी के जीवन और विचारों को याद करने का अवसर देती है। गांधी जी के विचारों में सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन, स्वच्छता, समानता और ग्राम स्वराज का विशेष स्थान था।
1: जी जी।
0: आज सच्चा स्वराज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि गांधी जी का सत्य और अहिंसा का संदेश क्या था और ग्राम स्वराज की उनकी कल्पना आज के गाँव के लिए किस तरह प्रासंगिक हो सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि गांधी जी के जीवन का सबसे मजबूत आधार था सत्य। सत्य का अर्थ केवल झूठ न बोलना नहीं है, सत्य का अर्थ है अपने विचार, व्यवहार और कार्यों में ईमानदारी रखना।
0: बिल्कुल।
1: अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना। श्रोता साथियों, आज के समय में सही जानकारी का महत्व बहुत बढ़ गया है। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हमें हर दिन बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन हर सूचना सही हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे में गांधी जी का सत्य का सिद्धांत हमें सिखाता है कि किसी भी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता जांचनी चाहिए। गांव में किसी योजना, सरकारी सुविधा, खेती, स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी गलत जानकारी कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जागरूक नागरिक वही है श्रोता साथियों, जो जानकारी प्राप्त करता है, उसकी पुष्टि करता है और फिर दूसरे तक सही जानकारी पहुँचाता है।
0: जी हाँ अंजलि, यही सत्य की आज की उपयोगिता है। गांधी जी ने अहिंसा को जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना। श्रोताओं, अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक नुकसान न पहुंचाना नहीं है, किसी को अपमानित करना, कमजोर व्यक्ति को दबाना, भेदभाव करना या किसी की बात सुने बिना उसे गलत समझ देना भी समाज में तनाव पैदा कर सकता है। गांव में बहुत सारे परिवार और समुदाय एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, ऐसे में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ने की वजह संवाद और समझदारी से समाधान निकालना बहुत जरूरी है। गांधी जी का संदेश हमें बताता है अंजलि कि बातचीत की शक्ति संघर्ष को कम कर सकती है। यदि किसी गांव में पानी, रास्ते, चरागाह, स्वच्छता या किसी अन्य सामुदायिक संसाधन को लेकर समस्या है तो श्रोताओं, आपसी बातचीत, ग्राम सभा और सामूहिक निर्णय के माध्यम से समाधान खोजा जा सकता है और यही अहिंसा की सकारात्मक शक्ति है।
1: बिल्कुल। यही बात करें कि ग्राम स्वराज क्या है तो श्रोता साथियों, गांधी जी ग्राम स्वराज को ऐसे गाँव के रूप में देखते थे जो अपनी जरूरतों को समझे, अपने निर्णयों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें और स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें।
0: जी हाँ,
1: ग्राम स्वराज का अर्थ यह नहीं कि गांव दुनिया से अलग हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि गांव अपने स्थानीय संसाधनों, ज्ञान, श्रम और क्षमता का सम्मान करते हुए विकास की मुख्य धारा से जुड़े। आज ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह, किसान समूह, युवा समूह और सामुदायिक संस्थाएं लोगों की भागीदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: जब गांव के लोग केवल योजना के लाभार्थी न रहकर योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में भाग लेते हैं जागृति जी, तब स्वराज की भावना और अधिक मजबूत होती है।
0: बिल्कुल अंजलि, ग्राम स्वराज की कल्पना को समझने के लिए ग्राम सभा को समझना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि ग्राम सभा गांव के लोगों को अपने स्थानीय मुद्दों पर चर्चा और भागीदारी का अवसर देती है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, गाँव में सड़क कहाँ बनेगी, पानी की समस्या का समाधान कैसे हो, स्वच्छता को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, विद्यालय और आंगनवाड़ी से जुड़ी जरूरतें क्या है, सार्वजनिक संसाधनों की देखभाल कैसे हो, ऐसे विषयों पर सामूहिक चर्चा लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत करती है। ग्राम सभा में भाग लेना केवल अधिकार नहीं है, जिम्मेदारी भी है। यदि हम अपने गाँव की समस्याओं के समाधान में भाग नहीं लेंगे तो केवल दूसरों से बदलाव की उम्मीद करना पर्याप्त नहीं है। सच्चा स्वराज वहीं से शुरू होता है जहां नागरिक अपने गाँव के लिए अपनी जिम्मेदारी समझता है।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि बातें ढेर सारी चल रही हैं हमारी श्रोता साथियों से, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत चल रही है सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज को लेकर, जिसमें जागृति जी हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें आत्मनिर्भर गांव की दिशा की ओर। तो श्रोता साथियों, गांधी जी आत्मनिर्भरता पर जोर देते थे। आज के गाँव में आत्मनिर्भरता का अर्थ स्थानीय संसाधनों और स्थानीय कौशल का बेहतर उपयोग करना हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: कृषि के साथ पशुपालन, बागवानी, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, स्थानीय खाद्य उत्पाद, पारंपरिक कला और ग्रामीण पर्यटन जैसे क्षेत्र गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दे सकते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्थानीय स्तर पर उत्पाद तैयार हो और उन्हें बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत हो तो गांव के लोगों के लिए आय के नए अवसर बन सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि हर चीज गांव में ही तैयार हो। इसका अर्थ है कि जहां स्थानीय स्तर पर क्षमता मौजूद है वहां उसे पहचान कर मजबूत किया जाए।
1: बिल्कुल अंजलि, गांधी जी ने स्वच्छता को बहुत महत्व दिया था, ये हम सब जानते हैं कि आज भी गांव के विकास में स्वच्छता की भूमिका महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: स्वच्छ घर, स्वच्छ गलियां, साफ पानी, उचित कचरा प्रबंधन और खुले में गंदगी को रोकने की सामूहिक कोशिश गांव के जीवन को बेहतर बना सकती है। स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है श्रोताओं, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर हर परिवार अपने घर के साथ साथ आसपास के सार्वजनिक स्थान को भी साफ रखेंगे तो पूरे गांव में बदलाव दिखाई दे सकता है। इसी के साथ जल, जमीन और प्रकृति की रक्षा को लेकर हम बात करें तो ग्राम स्वराज का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्थानीय प्राकृतिक संसाधन की रक्षा भी है। अंजलि, गांव का जीवन खेत, पानी, जंगल, पशुधन और प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, स्थानीय जैव विविधता की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, गांधी जी के विचार हमें समझने की प्रेरणा देते हैं कि विकास प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर होना चाहिए।
0: जी हाँ जागृति जी, यही बात करें युवा और ग्राम स्वराज की तो श्रोता साथियों, आज गांव में युवा बड़ी संख्या में शिक्षा, तकनीक और नए विचारों से जुड़े हैं।
1: बिल्कुल,
0: युवा ग्राम स्वराज को नई दिशा दे सकते हैं। वे डिजिटल तकनीक का उपयोग करके सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और गांव की समस्याओं के समाधान के लिए नए विचार सामने ला सकते हैं। कहना चाहेंगे कि गांधी जी का स्वराज केवल बुजुर्गों या नेताओं की जिम्मेदारी नहीं था, हर पीढ़ी की अपनी भूमिका होती है।
1: बिल्कुल,
0: वहीं अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो जागृति जी, ग्राम स्वराज तब मजबूत होता है जब गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी भी मजबूत होगी। महिलाएं परिवार, कृषि, पशुपालन, जल प्रबंधन, बचत और स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ,
0: महिलाएं स्व सहायता समूह और स्थानीय संस्थानों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक और सामाजिक निर्णयों में अपनी भागीदारी बढ़ा सकती है। जब निर्णय प्रक्रिया में समाज के अलग अलग वर्गों की आवाज शामिल होती है तब लोकतंत्र अधिक सहभागी बन पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, हम देखते हैं कि आज तकनीक का युग है, मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल भुगतान और आधुनिक कृषि तकनीक ने जीवन को काफी बदल दिया है। फिर भी गांधी जी के कुछ मूल विचार आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन, स्वच्छता, समानता और जिम्मेदार नागरिकता। तकनीक हमारे हाथ में साधन दे सकती है श्रोताओं, लेकिन उसका सही उपयोग कैसे करना है ये हमारे मूल्यों पर ही निर्भर करता है। इसीलिए आधुनिक गाँव को तकनीक के साथ साथ गांधी जी के मूल विचारों से भी जुड़ना होगा। हम देखते हैं अंजलि कि ग्राम स्वराज किसी एक व्यक्ति या संस्था के प्रयास से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए नागरिक, पंचायत, किसान, युवा, महिलाएं, शिक्षक, सामाजिक संस्थाएं और स्थानीय समुदाय सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है।
0: जी जी।
1: सच्चा स्वराज तब दिखाई देगा श्रोताओं जब लोग अपने गांव की समस्याओं को केवल शिकायत के रूप में नहीं बल्कि समाधान की जिम्मेदारी के रूप में देखेंगे।
0: बिल्कुल।
1: जब हम पानी बचाएंगे, पेड़ बचाएंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, सही जानकारी को फैलाएंगे, ग्राम सभा में भाग लेंगे और आपसी विवादों को संवाद से सुलझाने की कोशिश करेंगे तब गांधी जी के विचार हमारे व्यवहार में दिखाई देंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, गांधी जयंती केवल गांधी जी की तस्वीर पर माला चढ़ाने का दिन नहीं होता है, यह अपने जीवन और समाज में उनके विचारों को समझने और अपनाने का अवसर है। सत्य हमें सही रास्ता दिखाता है, अहिंसा हमें साथ लेकर चलना सिखाती है।
1: बिल्कुल।
0: स्वावलंबन हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है और ग्राम स्वराज हमें याद दिलाता है कि गांव का विकास गांव के लोगों की भागीदारी से ही मजबूत बनता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए गांधी जयंती पर हम यह संकल्प लें कि अपने गांव को केवल सुविधाओं से नहीं बल्कि जिम्मेदारी, सहयोग, स्वच्छता, सत्य और सहभागिता से भी मजबूत बनाएंगे, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का नाम नहीं यह अपने गांव, अपने समाज और अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी का नाम है
1: जी हाँ।
0: और जब हर गांव जागरूक होगा, हर नागरिक जिम्मेदार होगा, हर हाथ विकास में अपना योगदान देगा, तभी गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना एक जीवंत विचार बनकर हमारे बीच दिखाई देगा।
1: बिल्कुल,
0: यही गांधी जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही होगा हमारा सच्चा स्वराज।
1: बिल्कुल अंजलि, तो अंत में हमारे श्रोता साथियों से यही कहना चाहेंगे कि सत्य हमारा दीप बने, अहिंसा हमारी राह, गांव-गांव में जागे चेतना, यही स्वराज की चाह हो। मिलकर कदम बढ़ाए हम, नया सवेरा लाए हम, सच्चे अर्थों में स्वराज अपने गांव में पाए हम। इसी संदेश के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम सच्चा स्वराज से हम विदा लेना चाहेंगे साथियों, पर जाने से पहले सुना देते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ,

0: गीत के साथ साथियों विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से सत्य अहिंसा को लेकर वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वाकथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि शरीर के संकेतों को हमें समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर कई बार बिना कुछ कहे भी हमें बहुत कुछ बताता है।
0: बिल्कुल,
1: लगातार थकान, शरीर में कमजोरी या अचानक चक्कर आना, हम अक्सर इन्हें काम की अधिकता, नींद की कमी और सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना सही नहीं होता। आज हम समझेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि थकान, कमजोरी और चक्कर के सामान्य कारण क्या हो सकते हैं और किन परिस्थितियों में हमें सावधान होना चाहिए और कब डॉक्टर से सलाह लेना हमारे लिए जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं शरीर के संकेतों को समझिए, थकान, कमजोरी और चक्कर को कब गंभीरता से लेना है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारा शरीर हमें हर समय कुछ न कुछ संकेत देता रहता है। कभी हमें भूख लगती है, कभी नींद आती है, कभी शरीर आराम मांगता है और कभी दर्द के माध्यम से शरीर बताता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस तरह श्रोता साथियों, थकान, कमजोरी, चक्कर भी शरीर के कुछ महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। कई बार श्रोता साथियों दिन भर काम करने, कम नींद लेने, ज्यादा मेहनत करने या समय पर खाना न खाने के कारण थोड़ी सी थकान वो सामान्य बात हो सकती है। आराम करने और सही भोजन लेने के बाद ऐसी थकान ठीक भी हो जाती है अंजलि जी। लेकिन अगर श्रोता साथियों थकान बार बार हो, कमजोरी लगातार बनी रहे, बिना किसी स्पष्ट कारण के चक्कर आने लगे, तो इसे केवल सामान्य परेशानी समझकर श्रोता साथियों में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि हम दिन भर काम करने के बाद थकान महसूस करते हैं और यह सामान्य बात है।
0: जी हाँ,
1: पर्याप्त आराम और नींद के बाद यह कम भी हो जाती है। लेकिन अगर बिना ज्यादा काम किए भी लगातार थकान महसूस हो, रोजमर्रा के काम करने में परेशानी होने लगे या लंबे समय तक आराम के बाद भी ऊर्जा वापस न आए, तो इसके कारण पर ध्यान देना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: इसके पीछे नींद की कमी, तनाव, भोजन में पोषक तत्वों की कमी, शरीर में खून की कमी या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए श्रोता साथियों, लगातार बनी रहने वाली थकान को केवल कमजोरी कहकर छोड़ देना ठीक नहीं है। कभी कभी हमें लगता है मनीषा कि शरीर में ताकत ही नहीं है, सीढ़ियां चढ़ने, चलने या रोज के काम में पहले की तुलना में ज्यादा परेशानी होने लगती है। ऐसी स्थिति में श्रोता साथियों अपने खान पान और आराम पर ध्यान दें। भोजन में पर्याप्त दालें, अनाज, सब्जियां, मौसमी फल, दूध और उपलब्ध अन्य जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं उन्हें शामिल करें और पर्याप्त पानी पिएं। अगर कमजोरी लगातार बनी रहती है या बढ़ती जा रही है, तो स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर से सलाह लेना भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगी कि श्रोता साथियों, कमजोरी का मतलब शरीर में ऊर्जा की कमी भी हो सकती है। व्यक्ति को लग सकता है कि उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं है, सीढ़ियां चढ़ने, थोड़ा सा चलने, रोज के काम करने में थकान महसूस हो सकती है। कमजोरी कभी कभी खाना ठीक न मिलने या शरीर को पर्याप्त आराम न मिलने के कारण भी श्रोता साथियों हो सकती है। लेकिन अगर यह लगातार बनी रहती है, तो इसके कारण को समझना अंजलि जी हमारे लिए बहुत जरूरी है। संतुलित भोजन शरीर को ऊर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन में श्रोता साथियों, जैसे कि अंजलि जी ने आपको बताया था कि अनाज, दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध या इसके जो अन्य वैकल्पिक मेवे हैं, वो उचित मात्रा में हम शामिल कर सकते हैं।
1: जी हाँ मनीषा, यही बात करें चक्कर आने पर तुरंत क्या करें, तो श्रोता साथियों चक्कर आने पर तुरंत खड़े होकर चलने की कोशिश न करें। सुरक्षित जगह पर बैठ जाएं या लेट जाएं ताकि गिरने से चोट न लगे। कभी कभी भूखे रहने, शरीर में पानी की कमी, अचानक उठने या बहुत अधिक गर्मी के कारण भी चक्कर आ सकते हैं। इसलिए पर्याप्त पानी और नियमित भोजन का ध्यान रखें। लेकिन अगर चक्कर बार बार आए, बहुत तेज हो या उसके साथ अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दे, तो इसे गंभीरता से भी लेना चाहिए। अगर चक्कर या कमजोरी के साथ बेहोशी, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, बोलने में दिक्कत, शरीर के किसी हिस्से में अचानक कमजोरी या सुन्नपन, चलने में गंभीर परेशानी, तेज सिर दर्द या भ्रम जैसी स्थिति हो, तो इंतजार नहीं करना चाहिए और तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह मनीषा, अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने पर भी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बातें चल रही हैं, जैसे कि हम बातें कर रहे हैं शरीर के संकेतों को समझिए, थकान, कमजोरी और चक्कर को हमें कब गंभीरता से लेना है, तो ये बातें हमारी इस विषय पर आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से थकान, कमजोरी और चक्कर के जो संकेत हैं, वो हमें किस तरीके से समझने हैं और उन्हें कब गंभीरता से लेना है। यही बात करें कि थकान या कमजोरी महसूस होने पर कई बार जो लोग हैं वो बिना जांच के आयरन, विटामिन और दूसरी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने के बजाय पहले कारण समझना श्रोता साथियों बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: अगर समस्या बार बार हो रही है या लंबे समय से बनी हुई है तो डॉक्टर आपकी स्थिति देखकर आवश्यक जांच की सलाह भी दे सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि समय पर संतुलित और व्यवस्थित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, पूरी नींद लेने की कोशिश करें, बहुत देर तक खाली पेट न रहें, अचानक बैठने और लेटने से खड़े होने के बजाय धीरे धीरे उठें। लगातार थकान या चक्कर हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है। जरूरत महसूस होने पर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से सलाह भी लेनी है।
1: जी हाँ।
0: मनीषा, अक्सर हम देखते हैं कि अभी का जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल अलग हो गया है। हम खाना कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो न तो उसका हमें पता रहता है। हम कितना काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी दिनचर्या जो है वो अव्यवस्थित हो गई है, किसी भी तरीके का कुछ भी हम ध्यान नहीं रखते हैं।
1: जी हाँ।
0: इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ हमें दिखता है और बहुत सी बार हम स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाह हो जाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य से बड़ा कोई भी धन नहीं है, इसलिए सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य को महत्व दीजिए, उसके बाद जो अन्य कार्य हैं हमारे जीवन के उन्हें हमें पूर्ण करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं श्रोता साथियों कि कुछ दिनों की कमजोरी अगर आराम और भोजन सुधारने से ठीक हो सकती है श्रोता साथियों, तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती है। लेकिन कमजोरी लंबे समय तक बनी रहे या बढ़ती जाए तो इसके पीछे के कारण होते हैं उसको भी हमारे लिए जानना जरूरी होता है। अगर व्यक्ति को बार बार कमजोरी महसूस होती है, चलने या रोज के काम करने में असामान्य परेशानियां होती हैं, या कमजोरी के साथ कुछ अन्य लक्षण दिखाई देते हैं, तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बुजुर्ग लोगों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को श्रोता साथियों डॉक्टर की सलाह लेना उनके लिए बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल मनीषा, शरीर हमें अचानक परेशान करने के लिए नहीं बल्कि कई बार सावधान करने के लिए संकेत देता है। थकान, कमजोरी और चक्कर हर बार किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होते, लेकिन जब ये बार बार हो और लंबे समय तक बना रहे तो इसके साथ दूसरे असामान्य लक्षण भी दिखाई दें, तो इन्हें नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है।
1: जी हाँ।
0: स्वास्थ्य का ध्यान रखने का मतलब केवल बीमारी होने के बाद इलाज कराना नहीं बल्कि शरीर में होने वाले बदलावों को समय रहते पहचानना भी है। अपने शरीर की बात सुनिए श्रोता साथियों, अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान दीजिए, जरूरत पड़ने पर सही समय पर चिकित्सा सलाह लीजिए और याद रखिए कि छोटा सा संकेत समय पर समझ लिया जाए तो बड़ी परेशानी से बचने का मौका मिल सकता है। क्योंकि मनीषा, शरीर की हर परेशानी को बीमारी मानना जरूरी नहीं है, लेकिन हर संकेत को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। अगर कोई परेशानी बार बार हो रही है और निरंतर बढ़ रही है या रोजमर्रा के काम हमारे प्रभावित हो रहे हैं, तो अनुमान लगाने के बजाय स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।
1: जी हाँ।
0: खासकर अचानक दिखाई देने वाले गंभीर लक्षणों में देरी नहीं करनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कई बार श्रोता साथियों हम डॉक्टर के पास जाकर भूल जाते हैं कि समस्या कब शुरू हुई, इसलिए ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको थकान, कमजोरी या चक्कर बार बार हो रहे हैं तो उसकी जानकारी आप लिख कर भी रख सकते हैं, जैसे कि समस्या कब हुई, कितनी देर रही, खाना खाने से पहले हुई या बाद में, काम करने के बाद हुई या आराम से पहले, ऐसे श्रोता साथियों कुछ बातें हैं वो हम लिख कर रख सकते हैं। ऐसी जानकारी हम डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर को समस्या समझने में जल्दी मदद मिल सकती है।
0: बिल्कुल मनीषा, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर न तो बेवजह हमें डरने की जरूरत है और न ही लापरवाही करने की है। सजग रहना है, समय पर सलाह लेनी है और अपनी रोजमर्रा की आदतों को बेहतर बनाना ही स्वस्थ जीवन की समझदारी है। इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य की देखभाल का पहला कदम है अपने शरीर को समझना, उसके संकेतों को सुनना और सही समय पर सही कदम उठाना।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारे स्वास्थ्यप्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहें, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमर वर अमर हित्ता भाई बोनों ने आपनी बोन मनीषा ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। कोई भाई बोनों आप सब हमें रिया हो अपने सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: हवे भाई बोनों लेने हाजिर थी गये हूँ कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाथे मनीषा बोन आज कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नु विषय है की किसानों में जो आपसी अनुभव साझा थाता था आ परंपरा कम केम थी गई है ने समस्याना उपाय हूँ थी सके तो भाई बोनो अपने देखो हो कि किसान सिर्फ खेत में मेहनत करवा वालों मनकस नहीं रहतु बल्कि ये खेत नु अनुभवी जानकार भी रहे है। कई मिट्टी में कई फसल अच्छी रहेगा कया मौसम में खेत में कई सावधानी अपना ने रखी है पशु ने देखभाल अपना ने हरती करवी है ने कई स्थानीय तकनीकी अपना काम आवे एवी घणा कानी वाते जे है ए किसान अपना वर्षो नो अनुभव तकी ही के है। पहले आपने देखतो तो कि गांव ना जे किसान है ये आपस में बैठने वाते करता खेत में मलता हाट बाजार में बातचीत करता ने खेती तकी चूड़ी जे वाते है ये एक का बिजन बतारता है पर अवड़े ना टाइम में धीरे धीरे आपसे जे वाते है ये कम थी रही है। तो आज आप कार्यक्रम में ये जानूंगा कि किसान वैस में जे अनुभव साझा थाता हता आ परंपरा कम केम थी गई है समस्या हूँ है ने समाधान ना उपाय हूँ थी सके
0: हवे अंजलि बोन तो अना विषय माते अपने भाई बोने खाते घना अक्काने वाते रिंगा पण कार्यक्रम नी शुरुआत में हमड़ा गीत ने मोरे कर अपनी वाती
1: हवे तो भाई बोनो आप हमवरते रहसु आपडो रेडियो अपनी वाते वागर रेडियो 90.8 FM माते
2: जी मैं सोचो कि थर वास्ते कि ले रहा हूं पर मन समझ ही कोनी लगी कि के ले रहा हूं ओ जी थे ही बता दियो के ले रहा हूं।

थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारतीय नु खावानो सोड़ो, देशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा। बागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

घर के निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रहो है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसोरा ने मुस्कान। होवे इतली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रहो है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसूर ने मुस्कान।
1: होवे इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी इतनी जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।